सुप्रभात श्रोता साथियों, सुबह के सुनहरे सफर में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज। और मैं हूँ साथियों आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर, लेकर हाजिर हो चुकी हूँ इस ताजगी से भरी सुबह में हमारे दिन के सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, हर नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद, एक नए सपनों की किरण लेकर आती है, और हम भी चाहते हैं कि आपके दिन की शुरुआत भी हो ज्ञान, प्रेरणा और मधुर संगीत के साथ में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस खूबसूरत सफर की, जहां हर पल होगा खास, कुछ नया सीखने वाला और कुछ मन को छू जाने वाला, सिर्फ सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो पर। साथियों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना। दिन की शुरुआत हो प्रभु के नाम से। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भक्ति, श्रद्धा व आस्था से जुड़े गीतों को, जो आपके मन को शांति दे। तो आइए साथियों, ईश्वर की वंदना के साथ अपने दिन की शुभ शुरुआत करते हैं। इसी के बाद सुबह 6:30 पर होगा कार्यक्रम खेतीबाड़ी, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है और उनकी मेहनत से ही जीवन की थाली सजती है। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं साथियों खेती के नए तरीके, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण सलाह को, ताकि खेतों में हरियाली बढ़े और किसानों के चेहरे पर मुस्कान खिले। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट और उनके साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। सुबह 7 बजे श्रोता साथियों हम प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन। नन्हे मुन्ने श्रोता साथियों के साथ जहां होंगी रोचक कहानियां और ढेर सारी मस्ती। यह कार्यक्रम बच्चों की दुनिया को ज्ञान और संस्कार के रंगों से सजाता है। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर यानी कि मैं, और मेरे साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। साथियों, इसी के बाद हम रुक करेंगे सुबह 7:30 पर। आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही देश की असली शक्ति है। इस कार्यक्रम में मिलेंगी करियर से जुड़ी जानकारियां और नए विचारों को मंच, ताकि हर युवा अपने सपनों को नई उड़ान दे सके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर, और मेरे साथ होंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट। इसी के बाद दोस्तों सुबह 8 बजे प्रस्तुत होगा कार्यक्रम सच्चा स्वराज, क्योंकि स्वराज केवल स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और जागरूकता का संदेश भी है। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट और उनके साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। इसी के बाद दोस्तों हम रुक करेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास और परंपराओं की ओर। लोक संगीत में बसती है हमारी मिट्टी की पहचान, तो तैयार हो जाइए साथियों ढोलक, बांसुरी, मंजरी की मधुर धुनों पर झूमने के लिए कार्यक्रम लोक संगीत में। इसे आप सभी सुनेंगे ठीक सुबह 8:30 पर। इसी के बाद दोस्तों हम फिर से बढ़ेंगे सुबह 9 बजे हमारे अगले खास और रंगों से भरे कार्यक्रम घूमर की ओर, क्योंकि साथियों राजस्थान की संस्कृति में घूमर केवल एक लोक नृत्य नहीं बल्कि नारी की खुशी, सम्मान और परंपरा का सुंदर प्रतीक है। इसी परंपरा और नारी शक्ति को समर्पित है हमारा यह विशेष कार्यक्रम घूमर, जहां महिलाओं से जुड़ी बातें, उनकी प्रतिभा, अनुभव और जीवन की प्रेरणादायक बातें आप तक पहुंचाई जाती है। इसी के बाद दोस्तों शुरू होगा हमारा विशेष प्रेरणादायक कार्यक्रम सपनों की उड़ान, जिसमें आप जानेंगे साथियों नए नए प्रेरणादायक विषयों के बारे में और हमारी सपनों की उड़ान के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी और इसे आप सुन पाएंगे ठीक सुबह 9:30 पर। तो श्रोता साथियों, जैसा कि रूपरेखा कार्यक्रम की आप जान ही पा रहे हैं, अब समय है सीधे आपसे जुड़ने का और आपकी बात सुनने का। कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में, जहां आप सभी सुनेंगे आपकी राय, आपके अनुभव और समाज से जुड़ी बातों को। इसी के आगे साथियों दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक प्रस्तुत होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जो है सिर्फ आपके नाम। इस कार्यक्रम में बजेंगे वही गीत जो आपके पसंदीदा होंगे। आप अपनी फरमाइश और संदेश के लिए हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं साथियों हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों जुड़े रहिए सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो के साथ में, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज ही है सबसे खास। तो श्रोता साथियों, यह तो थी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए अब शुरुआत करते हैं आज की सुनहरी सुबह की कार्यक्रम।

जब किसी व्यक्ति को किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है तो वो घटना उसके अंतर को झकझोर देती है। समस्त जगत उसे अपना शत्रु प्रतीत होता है। अन्याय लगने वाली घटना जितनी बड़ी होती है मनुष्य का हृदय भी उतना ही अधिक विरोध करता है। उस घटना के उत्तर में वो न्याय मांगता है और ये योग्य भी है। वास्तव में समाज में किसी भी प्रकार का अन्याय व्यक्ति की आस्था और विश्वास का नाश है। किंतु ये न्याय क्या है? न्याय का अर्थ क्या है? अन्याय करने वाले को अपने कार्य पर पश्चाताप हो और अन्याय भुगतने वाले के मन में फिर से विश्वास जगे समाज के प्रति, इतना ही अर्थ है ना न्याय का। किंतु जिसके हृदय में धर्म नहीं होता वो न्याय को छोड़कर बैर और प्रतिशोध को अपनाता है, हिंसा के बदले प्रतिहिंसा की भावना लेकर चलता है। स्वयं भोगे हुई पीड़ा से कहीं अधिक पीड़ा देने का प्रयत्न करता है और इस मार्ग पर चलते अन्याय को भुगतने वाला स्वयं अन्याय करने लगता है। शीघ्र ही वो अपराधी बन जाता है। अर्थात न्याय और प्रतिशोध के बीच बहुत कम अंतर होता है और इसी अंतर का नाम है धर्म। क्या ये सत्य नहीं? स्वयं विचार कीजिए।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम खेती बाड़ी हमर बाबरा अमर हित्ता किसान भाई बोन ने आपनी बोन मनीषा
1: ने आपनी बोन अंजलि नु
0: राम राम। होवी भाई बोनो आप सब हमली रिया हो आपड़ू सामुदायिक रेडियो वाकर रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नु घणी मान स्वागत करे हूँ हमारे आज ने कार्यक्रम खेती बाड़ी में।
1: होवे भाई बोनो लेने हाजिर थे गये हूँ कार्यक्रम खेती बाड़ी ने एक ना विषय ने हाथे। भाई बोनो आज कार्यक्रम में हमारी अब तक की बातचीत में विषय है की पानी आपने पहले अपने पानी बचावा तैयारी हरते करी। मनीषा बोन आपने देखो हो के आज जे विषय माते आज आपने बात करी रहो हो ये आपकी खेती पशुपालन गांव आवा वाली पीढ़ी ने भविष्य तक जुड़े तको है। आपने सब जानो सो कि पानी जे है इने वगर आपू जे जीवन है ये संभव नहीं। खेतर नी हरियाली पशुओं नु स्वास्थ्य घर नी जे जरूरत है ई ने गांव नी समृद्धि हेती चीजे है ई पानी माते निर्भर करे है। पर आज ना टाइम में आपने देखी रहो के गाँव में गर्मी जे है ई वधवाने कारण कुआ हुकी जाए है हेडपंप में पानी नहीं आवतु खेतर में सिंचाई नी जे समस्या है ई वधी रही है ने बीजी आड़ी आपने देखो हो तो बरसात नु जे पानी है ई हेतु वही ने नारा ने नदियों में सलुसा है जेने कारण पानी नी जे समस्या है ई हर साल वधती जा रही है। ताजे आपने कार्यक्रम में इस बात करूंगा कि हरते पानी नी हर बूंद बचावू अपने भविष्य ने बचावाने बराबर है।
0: હવે અંજલિ બોન તો આના વિશે માટે આપણે ભાઈ બોનો કતી ઘણા અક્કાની વાતે રેંગા અબર હામળા ગીત ને મોરે કર આપણી વાતે
1: હવે
0: તો ભાઈ બોનો આપ સબ હામળતા રહેજો આપડું રેડિયો આપડી વાતે વાગડ રેડિયો 90.8 FM માટે।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: भाई ने बोलो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े नी कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा। होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना कदम है, ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है समाज में बच्चों की भूमिका को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि बच्चे किसी भी समाज की सबसे महत्वपूर्ण और अनमोल धरोहर होते हैं। वे केवल परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र का भविष्य होते हैं।
0: जी,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि जिस प्रकार एक बीज में एक विशाल वृक्ष बनने की क्षमता होती है, उसी प्रकार बच्चे में एक बेहतर समाज और देश बनाने की शक्ति छिपी होती है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम बच्चों की भूमिका को समझें और उन्हें सही दिशा दें।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो आज के

0: कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है,
1: जी हाँ,
0: तो क्यों ना श्रोता साथियों को पहले गीत हम सुनवाएं?
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि समाज में बच्चों की क्या भूमिका है।
1: बिल्कुल,
0: अगर समाज की नींव के रूप में बच्चों को देखा जाए साथियों, तो हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो समाज की नींव होते हैं। जिस तरह मजबूत नींव पर ही एक मजबूत इमारत खड़ी होती है अंजलि जी, उसी प्रकार बच्चों के अच्छे संस्कार और शिक्षा से ही एक स्वस्थ और सशक्त समाज का निर्माण होता है।
1: बिल्कुल,
0: अगर बच्चों को बचपन से ही सही शिक्षा, संस्कार, मूल्य दिए जाएं, तो वे बड़े होकर जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं।
1: जी हाँ, यही कशिश अब बात आती है कि शिक्षा और जागरूकता में इनकी क्या भूमिका होती है। तो श्रोता साथियों, आज के बच्चे पहले की तुलना में अधिक जागरूक और समझदार हैं।
0: बिल्कुल,
1: वे नई नई तकनीकों और जानकारियों से जुड़े रहते हैं। कशिश, बच्चे अपने माता पिता और समाज को भी नई चीजें सिखाते हैं। वे स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक कर सकते हैं। और कई बार बच्चे ही घर में बदलाव की शुरुआत करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि हाथ धोना, सफाई रखना, पर्यावरण बचाना, ये सभी। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि बच्चे पर्यावरण की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पेड़ लगाना, उनकी देखभाल करना, पानी और बिजली की बचत करना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, स्वच्छता अभियान में भाग लेना। कशिश, जब बच्चे इन आदतों को अपनाते हैं तो वे अपने परिवार और समाज को भी प्रेरित करते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें सामाजिक मूल्यों के प्रचारक की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और जो सीखते हैं उसे अपनाते भी हैं। साथियों, वे ईमानदारी, सच्चाई, सहयोग और प्रेम जैसे गुणों को फैलाते हैं। वे समाज में साथियों, भाईचारा और एकता को मजबूत करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही बच्चों के व्यवहार से ही समाज की संस्कृति और सभ्यता का पता चलता है अंजलि जी। अगर बात करें परिवार की, तो देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो परिवार और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के तरह काम करते हैं। वे अपने परिवार के संस्कारों को समाज में ले जाते हैं साथियों, और समाज की सीख को परिवार तक लेकर आते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हम इस तरीके से कह सकते हैं कि वे दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं।
1: यही कशिश अब बात आती है बदलाव के वाहक की। तो श्रोता साथियों, आज के बच्चे भविष्य के नेता, शिक्षक, वैज्ञानिक और समाज सेवी हैं।
0: बिल्कुल,
1: वे समाज में नए विचार और नई सोच लेकर आते हैं। वे पुरानी कुरीति और गलत परंपराओं को बदलने की क्षमता भी रखते हैं।
0: जी,
1: वे समाज को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कह सकते हैं कशिश के बच्चों में नैतिक और भावनात्मक विकास समाज के लिए बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: अगर बच्चों को सही और गलत का ज्ञान दिया जाए श्रोता साथियों, तो वे सही निर्णय ले सकते हैं। वे दूसरों के प्रति संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण बनते हैं, जिससे समाज में शांति और सद्भाव बना रहता है।
0: बिल्कुल,
1: आज के समय में कशिश बच्चों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मोबाइल, इंटरनेट की लत हो गई, पढ़ाई का दबाव हो गया, सामाजिक असमानता हो गई और गलत संगति। श्रोता साथियों, इन समस्याओं के कारण बच्चों का विकास प्रभावित हो सकता है, इसे समाज और परिवार को मिलकर उनका समाधान करना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: बच्चों की भूमिका को मजबूत बनाने के लिए समाज की जिम्मेदारी है कशिश कि उन्हें अच्छी शिक्षा और सुरक्षित वातावरण देना है, उनके अधिकारों की रक्षा करना है, उन्हें प्रोत्साहित और मार्गदर्शन देना है, और उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत होती है।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा अंजलि जी। तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से बातें हमारे श्रोता साथियों से बहुत अच्छी कर रहे हैं, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अभी क्यों ना हमारे साथियों को हम एक और गीत के साथ मनोरंजन करवाएं।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हम जान रहे थे कि समाज में बच्चों की क्या भूमिका है उसको लेकर, तो श्रोता साथियों, बच्चे किसी भी समाज का भविष्य ही नहीं बल्कि वर्तमान भी है। उनकी छोटी छोटी आदतें और कार्य समाज में बड़ा बदलाव ला सकती है। यदि कशिश हम बच्चों को सही दिशा, शिक्षा और संस्कार देंगे तो वे एक बेहतर और सशक्त समाज का निर्माण करेंगे। इसलिए बच्चों को केवल सीखने वाला नहीं बल्कि समाज का सक्रिय सदस्य मानना चाहिए। समाज का भविष्य कागज पर लिखी योजनाओं से नहीं बल्कि बच्चों के मन में बोए गए विचारों से तय होता है।
1: बिल्कुल।
0: अगर बच्चों के भीतर अच्छाई, सच्चाई और जिम्मेदारी का बीज बोया जाए कशिश, तो आने वाला समाज अपने आप ही उज्जवल और प्रगतिशील बन जाएगा। इसलिए बच्चों को समझाना और उन्हें सही मार्गदर्शन देना ही समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें तो देखते हैं श्रोता साथियों कि हम सबके लिए समझना जरूरी है कि बच्चे केवल समाज का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की सबसे सशक्त ऊर्जा भी हैं।
0: बिल्कुल।
1: उनके

0: उन्हें भरोसा देने की आवश्यकता है कि वे महत्वपूर्ण हैं, उनकी सोच मायने रखती है और वे समाज को बेहतर बना सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जब बच्चे आत्मविश्वास और सही मूल्यों के साथ आगे बढ़ते हैं तब समाज में सकारात्मक परिवर्तन अपने आप दिखाई देने लगता है। कहा जा सकता है कशिश कि बच्चों में किया गया हर छोटा निवेश, चाहे वह शिक्षा हो, संस्कार हो या प्रेम हो, वह पूरे समाज के उज्जवल भविष्य की नींव बनता है।
1: बिल्कुल,
0: यही कारण है कि बच्चों की भूमिका को समझना और उन्हें सशक्त बनाना किसी भी समाज की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए।
1: जी हाँ,
0: आज समाज का निर्माण केवल वर्तमान पीढ़ी के प्रयासों से नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के सपनों और सोच से होता है। बच्चे अपने भीतर असीम संभावनाएं लेकर जन्म लेते हैं। यदि उन्हें सही मार्गदर्शन, उचित शिक्षा और सकारात्मक वातावरण मिले तो वे समाज को नई दिशा देने में सक्षम होते हैं। वे नई सोच, नई ऊर्जा और नए विचारों के साथ समाज को आगे बढ़ाते हैं। कह सकते हैं कशिश के आज के बच्चे कल के नेता, वैज्ञानिक, शिक्षक और समाज सुधारक बनेंगे। इसलिए यह आवश्यक है श्रोता साथियों कि हम उनके अंदर आत्मविश्वास, जिम्मेदारी और नैतिकता के गुणों का विकास करें। जब बच्चे सही मूल्यों के साथ बड़े होते हैं तो वे समाज में समानता, न्याय और शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों को केवल भविष्य की उम्मीद मानकर नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि उन्हें आज से ही समाज के निर्माण में भागीदार बनाना चाहिए। यही सोच एक सशक्त, जागरूक और विकसित समाज की नींव रखती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो इस तरीके से हम कार्यक्रम के माध्यम से कह सकते हैं हमारे साथियों को कि दोस्तों, यदि अगर हम ध्यान से देखें तो समाज की असली तस्वीर बच्चों के व्यवहार में ही झलकती है।
0: बिल्कुल,
1: जिस समाज में बच्चे खुश, सुरक्षित और शिक्षित होते हैं वह समाज स्वयं ही समृद्ध और विकसित होता है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं अंजलि जी कि बच्चों की मुस्कान, उनकी मासूमियत और उनके सीखने की इच्छा ही समाज की असली पूंजी है। ऐसे में बच्चों को सही दिशा देना, उन्हें अच्छे संस्कार सिखाना और उनके सपनों को उड़ान देना केवल परिवार के ही नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल,
1: जब समाज बच्चों को समझता है और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देता है तब वे अपनी क्षमता के अनुसार समाज को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं।
0: जी जी,
1: इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा साथियों कि बच्चे समाज का आईना होते हैं, जैसा हम उन्हें बनाएंगे वैसा ही हमारा समाज बनेगा।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में बच्चों को सशक्त, शिक्षित और संस्कारी बनाना ही एक उज्जवल और सफल समाज की सबसे बड़ी कुंजी है।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम सच्चा बचपन में हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से बच्चे जो हैं वो हमारे समाज में भूमिका निभा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और किस तरीके से हमें बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करने की जरूरत होती है। तो आशा करते हैं श्रोता साथियों की सभी बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: जी हाँ,
0: विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल अंजलि जी।
2: चिक तक, चिक तक, चिक तक।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ।
0: तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को।
1: नमस्कार।

0: जागृति बुंद, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बुंद हूँ था का
0: अरे जागृति बुंद आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुंद एटले मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुंद हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुंद आपड़े भाई बुंद थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा
0: होवे होवे जागृति बुंद आपड़े भाई बुंदो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी यही कोई 10 करोड़ इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में सोचो जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा
4: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है
3: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के
5: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं ये सुरक्षा है सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें महिलाओं को दे उनका हक जमीन पर भी जिंदगी में भी महिलाओं के भूमि अधिकार क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
6: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ
7: किसी एक व्यक्ति की जमीन घर गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है गिरवी रखने से बचा है तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है
6: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर एक कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली कि छोटे छोटे ब्रेक से दिमाग को रिसेट कैसे करें। जैसा कि कशिश, मनुष्य का जीवन आज पहले की तुलना में कहीं अधिक व्यस्त हो गया है।
0: बिल्कुल,
1: सुबह से लेकर रात तक हम काम, पढ़ाई, जिम्मेदारियां और तकनीक से जुड़े रहते हैं।
0: जी हाँ,
1: मोबाइल की स्क्रीन, कंप्यूटर का काम, पढ़ाई का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां और भविष्य की चिंताएं हमारे दिमाग को लगातार सक्रिय रखती है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में अक्सर हम महसूस करते हैं कि हमारा मन थक गया है, ध्यान भटकने लगा है और काम में पहले जैसी ऊर्जा नहीं बची है।
0: जी बिल्कुल।
1: इसका कारण केवल शारीरिक थकान नहीं है श्रोताओं, बल्कि मानसिक थकान भी होती है। मानसिक थकान को दूर करने का एक सरल और प्रभावी उपाय है छोटे छोटे ब्रेक लेना। ये छोटे विराम हमारे दिमाग को रिसेट करने का काम करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमें फिर से नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए तैयार करते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम में इसी विषय को लेकर हम हमारे युवा साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जैसा कि दोस्तों गीत संगीत के साथ मनोरंजन करना भी जरूरी है, तो पहले मनोरंजन करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय तो बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात करने वाले हैं छोटे छोटे ब्रेक से दिमाग को हम रीसेट कैसे कर सकते हैं। जैसा कि जागृति जी, हम सभी देखते हैं कि आज के युवा साथी जीवन की तेज रफ्तार, प्रतिस्पर्धा और लगातार बढ़ती जिम्मेदारियों से भरे हुए हैं।
1: बिल्कुल
0: साथियों, पढ़ाई, करियर, सोशल मीडिया, परिवार की अपेक्षाएं और भविष्य की चिंताएं, इन सबके बीच हम युवा अक्सर बिना रुके आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहते हैं।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि जागृति जी, हमारे युवा साथियों को ऐसा लगता है कि लगातार काम करते रहना ही सफलता की कुंजी है। लेकिन यहाँ पर हम उन्हें बताना चाहेंगे कि सच्चाई ये है कि मनुष्य कोई मशीन नहीं है। शरीर की तरह दिमाग को भी आराम, संतुलन और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अक्सर देखा जाता है कि हमारे युवा साथी घंटों तक पढ़ाई करते हैं,
1: बिल्कुल
0: कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, या फिर किसी लक्ष्य को पाने के लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं।
1: जी हाँ,
0: देखते हैं कि शुरुआत में तो ये उन्हें काफी अच्छा लगता है, लेकिन कुछ समय बाद वे चिड़चिड़ापन, ध्यान की कमी जैसी समस्याएं उनके सामने आने लगती है।
1: जी हाँ,
0: ऐसे समय में दोस्तों बड़े अवकाश की नहीं, छोटे छोटे ब्रेक की हमें जरूरत होती है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि दिमाग भी हमारे शरीर के किसी अन्य अंग की तरह लगातार काम करते करते थक जाता है। यदि हम बिना रुके लंबे समय तक किसी कार्य में लगे रहते हैं तो हमारी एकाग्रता कम होने लगती है।
0: बिल्कुल,
1: हम गलतियां करने लगते हैं और काम की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। ऐसे समय में कुछ मिनट का छोटा सा ब्रेक हमारे मस्तिष्क को आराम देता है।
0: बिल्कुल,
1: ये आराम दिमाग को पुनः सक्रिय करने और नई सोच के लिए तैयार करने का अवसर देता है।
0: जी हाँ,
1: इसलिए कहा भी गया है कि थोड़ा रुकना हार नहीं बल्कि नई शुरुआत की तैयारी है।
0: बिल्कुल,
1: छोटे ब्रेक का अर्थ ये नहीं है दोस्तों कि घंटों तक काम छोड़ दिया जाए। इसका अर्थ ये है कि काम के बीच कुछ मिनट अपने मन और शरीर को आराम दिया जाए।
0: बिल्कुल,
1: उदाहरण के तौर पर कशिश, हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं तो यदि कोई बच्चा लगातार एक घंटे से पढ़ाई कर रहा है तो वो 5 या 10 मिनट का ब्रेक लेकर टहल सकता है।
0: जी जी,
1: पानी पी सकता है, खिड़की से बाहर का दृश्य देख सकता है। इससे उसका दिमाग ताजा हो जाएगा और वो पहले से बेहतर तरीके से पढ़ाई कर पाएगा।
0: बिल्कुल,
1: वैज्ञानिक शोध भी यही बताते हैं कशिश की, लगातार काम करने की तुलना में बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेने वाले लोग अधिक उत्पादक होते हैं। जब हम बिना रुके काम करते हैं श्रोताओं, तो हमारा मस्तिष्क जानकारी को सही तरीके से संसाधित नहीं कर पाता।
0: बिल्कुल,
1: वहीं कुछ मिनट का विराम उसे मिली हुई जानकारी को व्यवस्थित करने का अवसर देता है।
0: जी हाँ,
1: यही कारण है कि कई बार किसी कठिन समस्या का समाधान हमें तब मिलता है जब हम थोड़ी देर के लिए उस समस्या से दूर हो जाते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, दोस्तों जो छोटे छोटे ब्रेक होते हैं वो दिमाग के लिए रीसेट बटन की तरह काम करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि जागृति जी, मोबाइल फोन को कभी कभी रिस्टार्ट करने से उसकी गति बेहतर हो जाती है, ठीक वैसे ही कुछ मिनटों का विश्राम श्रोता साथियों हमारे मस्तिष्क को नई ऊर्जा और ताजगी से भर सकता है।
1: बिल्कुल,
0: देख सकते हैं कि ये केवल आराम करने का तरीका नहीं है बल्कि बेहतर प्रदर्शन और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने की एक वैज्ञानिक आवश्यकता भी है। देखते हैं जागृति जी कि कई युवा साथी ऐसा सोचते हैं कि अगर वे बिना रुके लंबे समय तक काम करेंगे तो उन्हें सफलता जल्दी मिलेगी।
1: जी हाँ,
0: लेकिन दोस्तों लगातार काम करने से दिमाग पर दबाव बढ़ जाता है। शुरुआत में तो ये दबाव आपको ज्यादा महसूस नहीं होगा, लेकिन जब ये धीरे धीरे अपना असर दिखाता है तो हमारे लिए ढेर सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं।
1: बिल्कुल,
0: देखते हैं कि जब हमारे युवा साथी लगातार काम करते हैं तो उनकी एकाग्रता कमजोर होने लगती है। वे छोटी छोटी बातें भूलने लगते हैं जागृति जी, निर्णय लेने की क्षमता उनकी प्रभावित होती है, रचनात्मकता कम हो जाती है और जो उनका मन है वो भी उस कार्य से जल्दी उबने लगता है।
1: बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कशिश कि अगर हम छोटा छोटा ब्रेक लेंगे तो हो सकता है कि हमारे कार्य बाधित नहीं होंगे।
0: बिल्कुल,
1: तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है कि छोटे छोटे ब्रेक से दिमाग को रिसेट कर सकते हैं, तो ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी हमारे आज के इस कार्यक्रम में। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ जागृति जी,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, और हमारी बातें चल रही थी कि छोटे छोटे ब्रेक से दिमाग को रिसेट कैसे करें। तो जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत सारी बातें की थी, यहीं अगर आपसे फिर से इस बारे में बात करें तो श्रोताओं, ब्रेक लेना उपयोगी है लेकिन उसका सही उपयोग करना भी बहुत जरूरी है। यदि ब्रेक के दौरान हम फिर से मोबाइल पर सोशल मीडिया देखने लगेंगे तो दिमाग को वास्तविक आराम नहीं मिल पाएगा।
1: बिल्कुल
0: बेहतर होगा कि ब्रेक के समय हम कुछ ऐसा करें जो मन को शांति दे, जैसे कि गहरी सांस लेना, हल्का व्यायाम करना, संगीत सुनना, पौधों को देखना या कुछ मिनट तक शांत बैठना।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कशिश की प्रकृति के साथ बिताए गए छोटे छोटे पल भी दिमाग को रिसेट करने का सबसे अच्छा तरीका होते हैं। पेड़ों की हरियाली, पक्षियों की आवाज, खुली हवा हमारे मन को नई ऊर्जा देती है, और यही कारण है कि कई विशेषज्ञ काम के बीच थोड़ी देर बाहर निकलने और प्रकृति के संपर्क में रहने की सलाह देते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि ये जो छोटे छोटे ब्रेक होते हैं वो कई स्तरों पर लाभ भी पहुंचाते हैं। जैसे कि जब हम लगातार किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं साथियों, तो इसमें काफी मानसिक ऊर्जा खर्च होती रहती है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में कुछ मिनट का ब्रेक इस ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने में सहायता करेगा। और जागृति जी, कई शोधों में भी ऐसा पाया गया है कि नियमित अंतराल पर लिए गए छोटे ब्रेक लोगों की एकाग्रता बनाए रखने में मदद करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और ब्रेक के बाद व्यक्ति अधिक फोकस के साथ फिर से काम शुरू कर पाता है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि कुछ मिनटों की राहत तनाव हार्मोन के स्तर को कम करने में मदद करती है। इससे आपका मन भी शांत रहता है और आप काम का दबाव भी कम महसूस करते हैं।
0: जी हाँ, कहते हैं कशिश के जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। निरंतर काम करना ही सफलता का एकमात्र रास्ता नहीं है श्रोताओं, सफलता के लिए ऊर्जा, एकाग्रता और मानसिक स्वास्थ्य भी उतने ही जरूरी है।
1: जी जी,
0: यदि हम अपने दिमाग को समय समय पर आराम नहीं देंगे तो धीरे धीरे हमारी कार्यक्षमता घटने लगेगी। इसीलिए छोटे छोटे ब्रेक लेना समय की बर्बादी नहीं बल्कि समय का बुद्धिमानी से किया गया निवेश है।
1: बिल्कुल,
0: हमें अपने दैनिक जीवन में ऐसे छोटे विरामों को शामिल करने होंगे श्रोताओं, जैसे कि चाहे हम विद्यार्थी हो, कर्मचारी हो, किसान हो, गृहिणी हो या व्यवसायी, हर व्यक्ति को मानसिक ताजगी की आवश्यकता होती है कशिश। कुछ मिनट का विश्राम हमें फिर से ऊर्जावान बनाता है श्रोताओं, और बेहतर निर्णय लेने में सहायता करता है।
1: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ अगर बात करें तो प्रकृति का मन और मस्तिष्क पर अद्भुत प्रभाव पड़ता है। ऐसा हम देखते हैं दोस्तों, ब्रेक के दौरान कुछ मिनट खुले आसमान, पेड़ों, पक्षियों या फिर हरियाली के बीच अगर हम बिताएं तो हमें मानसिक ताजगी मिल सकती है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि प्रकृति हमें ये याद दिलाती है जागृति जी कि जीवन केवल लक्ष्य और उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, उसमें संतुलन, शांति और सौंदर्य भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। देखते हैं कि जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी सांसें काफी तेज और उथली हुई हो जाती है।
0: जी हाँ,
1: वहीं गहरी और धीमी सांसें शरीर को ये संकेत देती है कि सब कुछ सुरक्षित है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप ब्रेक लेते हैं तो ब्रेक के दौरान आपको आराम से बैठना है, धीरे धीरे गहरी सांस लेनी है, कुछ क्षण रुकना है और धीरे धीरे उस सांस को छोड़ना है।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, केवल कुछ मिनटों का ये अभ्यास आपके मन को काफी हद तक शांत कर सकता है और आपको तनाव से भी दूर रखेगा।
0: जी हाँ,
1: हम कह सकते हैं कि लंबे समय तक बैठे रहने से शरीर कई बार अकड़ भी जाता है। ऐसे में ब्रेक के दौरान थोड़ा सा चलना, स्ट्रेचिंग करना या सीढ़ियां चढ़ना उतरना हमारे शरीर में रक्त संचार को बढ़ाएगा जागृति जी।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि हम देखते हैं कि छोटे छोटे ब्रेक हमारे दिमाग के लिए उसी प्रकार आवश्यक है जैसे शरीर के लिए भोजन और पानी। वे मानसिक थकान को दूर करते हैं, एकाग्रता बढ़ाते हैं, तनाव कम करते हैं और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करते हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, जीवन की भाग दौड़ में यदि हम कुछ पल स्वयं के लिए निकाल सके तो हमारा मन अधिक शांत, स्वस्थ, उत्पादक बन सकता है। याद रखिए, मशीनों को भी समय समय पर रिस्टार्ट करना पड़ता है।
1: जी जी,
0: फिर हमारा दिमाग तो उससे कहीं अधिक जटिल और अनमोल है श्रोताओं। इसलिए जब भी थकान महसूस हो आपको, कुछ पल रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए, मुस्कुराइए और अपने मन को नया आरंभ करने का अवसर दीजिए।
1: बिल्कुल,
0: हो सकता है कि वही छोटा सा ब्रेक हमें नई ऊर्जा, नया विचार और नई सफलता की दिशा दे दे। क्योंकि कहा गया है कि काम बहुत जरूरी है लेकिन आराम भी उतना ही जरूरी है। छोटे छोटे ब्रेक ही बड़े सपनों की ऊर्जा बनते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ दोस्तों आपसे कहें तो कभी कभी कुछ मिनट की सकारात्मक बातचीत भी हमारे दिमाग को रिफ्रेश कर देती है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि किसी प्रिय व्यक्ति से हंसते हुए बात करना जागृति जी हमारे तनाव को कम करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। क्योंकि मानवीय संबंध मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाते हैं, साथ ही भावनात्मक संतुलन भी बनाकर रखते हैं। दोस्तों, कहा जा सकता है कि जीवन में सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि समझदारी से की गई मेहनत से मिलती है। यदि व्यक्ति काम और आराम के बीच संतुलन नहीं बनाता है तो उसकी ऊर्जा जल्दी ही समाप्त हो सकती है जागृति जी। हम देखते हैं कि संतुलित जीवन में काम भी होता है, सीखना भी होता है, आराम भी होता है और मनोरंजन भी होता है।
0: बिल्कुल,
1: और यही संतुलन श्रोता साथियों लंबे समय तक सफलता का आधार बनता है।
0: जी हाँ कशिश, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे श्रोता साथियों को यही कहना चाहेंगे कि श्रोताओं छोटा सा ब्रेक बड़ी सोच की शुरुआत, तरोताजा दिमाग ही बनाता है सुनहरा भविष्य।
1: बिल्कुल,
0: इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ आपके साथ आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे, पर जाते जाते सुनवा देते हैं एक और गीत।
1: जी बिल्कुल जागृति जी,

0: साथियों इस गीत के साथ ही विदा लेंगे, पर अंत में आपसे कुछ कहना चाहेंगे कि जब भी आपको लगे कि मन थक गया है, विचार उलझ गए हैं या काम में मन नहीं लग रहा है, तब खुद को दोष मत दीजिए। कुछ पल का विराम लीजिए, गहरी सांस लीजिए, खुली हवा में जाइए और अपने मन को फिर से ऊर्जा से भरने का अवसर दीजिए।
1: बिल्कुल,
0: हो सकता है श्रोता साथियों कि जिस समस्या का समाधान घंटों की मेहनत से न मिला हो, वह कुछ मिनट की शांत ब्रेक के बाद स्वयं स्पष्ट हो जाए।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए काम और आराम के बीच संतुलन बनाएं, अपने मन और मस्तिष्क का सम्मान करें और हर दिन नई ऊर्जा के साथ अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएं। क्योंकि जब दिमाग तरोताजा होता है कशिश, तो सोच बड़ी होती है, निर्णय बेहतर होते हैं और सफलता के रास्ते भी साफ दिखाई देते हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, तो इन्हीं आशाओं के साथ दोस्तों अब हम कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
0: बिल्कुल,
1: तो श्रोता साथियों आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
0: हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज वागर रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान।
1: जी हाँ,
0: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए श्रोता साथियों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर।
1: बिल्कुल,
0: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारतेनू खवानू सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है डिजिटल संतुलन में संयुक्त परिवारों की भूमिका अहम को लेकर। जैसे कि हम देखते हैं श्रोता साथियों कि मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल उपकरणों ने हमारे जीवन को आसान तो बना दिया है, लेकिन इनके ज्यादा उपयोग ने कई समस्याएं पैदा भी की है। आज हम देखते हैं कि बच्चे, युवा, बड़े सभी स्क्रीन के सामने अधिक समय बिताने लगे हैं। ऐसे समय में संयुक्त परिवार केवल रिश्तों का समूह नहीं बल्कि जीवन में संतुलन बनाए रखने का एक मजबूत आधार बन सकता है।
0: बिल्कुल।
1: तो श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी यही बातें रहने वाली है कि डिजिटल संतुलन में संयुक्त परिवारों की क्या भूमिका होती है।
0: बिल्कुल। तो जागृति जी, बातें ढेर सारी बनी रहेंगी कार्यक्रम के माध्यम से, लेकिन अभी मन कर रहा है कार्यक्रम की शुरुआत में मनोरंजन करने का, तो क्यों ना हमारे साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था और हमारी बातें भी रही थी कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है डिजिटल संतुलन में संयुक्त परिवारों की भूमिका को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाहेंगे कि तकनीक का सही उपयोग परिवार का जो जीवन है वो बहुत अच्छा बना देता है। यानी कि आज का समय डिजिटल युग का समय है, जैसा कि हमने पहले भी कहा था अंजलि।
1: बिल्कुल।
0: शिक्षा, व्यापार, बैंकिंग, मनोरंजन और संचार सब कुछ डिजिटल माध्यमों से जुड़ गया है। सुबह उठते ही मोबाइल देखना और रात को सोने से पहले स्क्रीन पर समय बिताना आम आदत बन गई है। हम देखते हैं कि डिजिटल साधनों ने सुविधाएं बढ़ाई, लेकिन इनके कारण परिवार के सदस्यों के बीच संवाद भी कम होने लग गए हैं।
1: बिल्कुल।
0: कई बार एक ही घर में रहने वाले लोग घंटों साथ होते हुए भी एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। हर व्यक्ति अपनी डिजिटल दुनिया में खोया रहता है।
1: बिल्कुल शाकृति जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि डिजिटल संतुलन का अर्थ है तकनीक का उपयोग करना, लेकिन उसकी लत का शिकार न होना। जब हम मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल साधनों का उपयोग अपनी जरूरत के अनुसार करते हैं श्रोता साथियों, और साथ ही परिवार, समाज और स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास के लिए भी पर्याप्त समय निकालते हैं, तब उसे डिजिटल संतुलन कहा जाता है।
0: बिल्कुल।
1: डिजिटल संतुलन जागृति जी हमें सिखाता है कि तकनीक हमारी सहायता बने, मालिक नहीं। हम बात करें संयुक्त परिवार की विशेषता की, तो श्रोता साथियों, संयुक्त परिवार भारतीय संस्कृति की एक अनमोल धरोहर है। संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। दादा दादी, माता पिता, बच्चे, चाचा चाची, भाई बहन सभी एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनते हैं।
0: जी हाँ।
1: यह परिवार केवल रहने की व्यवस्था नहीं बल्कि जीवन सीखने की एक पाठशाला है। संयुक्त परिवार में अनुभव मिलता है, संस्कार मिलते हैं, संवाद बना रहता है, जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है, अकेलेपन की भावना कम होती है। यही गुण श्रोता साथियों डिजिटल संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि हम देखते हैं कि डिजिटल संतुलन का अर्थ तकनीक का ऐसा उपयोग जिसमें जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलू परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, मित्रता और सामाजिक संबंधों को नुकसान न पहुंचे। श्रोताओं, संयुक्त परिवार भारतीय संस्कृति की एक अमूल्य परंपरा है। इसमें दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन और अन्य सदस्य भी एक साथ रहते हैं। ऐसे परिवारों में केवल जिम्मेदारियां ही साझा नहीं होती अंजलि, बल्कि अनुभव, संस्कार और भावनाएं भी साझा होती है।
1: बिल्कुल।
0: बच्चों को अनेक लोगों का स्नेह और मार्गदर्शन मिलता है। आज जब डिजिटल उपकरण लोगों को अकेलेपन की ओर ले जा रहे हैं, संयुक्त परिवार लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही बताना चाहेंगे कि दादा दादी परिवार के अमूल्य धरोहर होते हैं। उनके पास जीवन के विशाल अनुभव होते हैं अंजलि। वे बच्चों और युवाओं को समझा सकते हैं कि जीवन केवल आभासी दुनिया तक सीमित नहीं है, वास्तविक खुशियां रिश्ते, संवाद और अनुभव में छिपी होती है।
1: बिल्कुल।
0: उनकी बातें और अनुभव युवाओं को तकनीक के सही उपयोग की दिशा दिखा सकते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, डिजिटल दुनिया की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग एक ही घर में रहकर भी एक दूसरे से कम बात करते हैं। कई बार भोजन करते समय भी सभी मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, लेकिन संयुक्त परिवारों में बातचीत की परंपरा बनी रहती है।
0: बिल्कुल।
1: घर के बड़े लोग बच्चों से दिन भर की बातें पूछते हैं, परिवार के सदस्य मिलकर समस्याओं पर चर्चा करते हैं, त्योहार, पारंपरिक कार्यक्रम और दैनिक गतिविधियां सभी को एक दूसरे के करीब लाती है। यह संवाद श्रोता साथियों लोगों को डिजिटल दुनिया के बाहर भी एक मजबूत सामाजिक जीवन प्रदान करता है।
0: बिल्कुल।
1: हम कहना चाहेंगे कि आज छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल के बिना खाना नहीं खाते। कई बार माता पिता काम में व्यस्त होने के कारण बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, लेकिन संयुक्त परिवार में बच्चे केवल मोबाइल तक सीमित नहीं रहते। दादा दादी उन्हें कहानियां सुनाते हैं, नाना नानी जीवन के अनुभव साझा करते हैं, भाई बहन और चचेरे बहन जो होते हैं वो एक साथ खेलते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इससे बच्चों का ध्यान केवल स्क्रीन पर नहीं रहता बल्कि वे वास्तविक जीवन की गतिविधियों में भी भाग ले पाते हैं। इससे बच्चों का मानसिक और सामाजिक विकास बेहतर होता है।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि हम देखते हैं कि लगातार स्क्रीन देखने से तनाव, चिंता और अकेलेपन की भावना बढ़ सकती है। हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे कि कई युवा सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना करके स्वयं को कमतर महसूस करने लगते हैं। अंजलि
1: जी जी,
0: श्रोताओं, संयुक्त परिवार भावनात्मक सहारा प्रदान करते हैं। जब व्यक्ति परेशान होता है तो परिवार के सदस्य उसका मनोबल बढ़ाते हैं और उसे सही दिशा दिखाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: परिवार का स्नेह कई मानसिक समस्याओं को कम करने में मदद करता है। हम कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार में त्योहार, पारिवारिक आयोजन, धार्मिक आयोजन, सामूहिक गतिविधियां नियमित रूप से होती है। इन गतिविधियों में भाग लेने से परिवार के सदस्य स्क्रीन से दूर होकर वास्तविक जीवन के अनुभव प्राप्त करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: साथ बैठकर भोजन करना, खेल खेलना, यात्रा करना और बातचीत करना डिजिटल संतुलन को मजबूत बनाता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है, आगे निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी मन कर रहा है एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से संवाद की संस्कृति को मजबूत बनाता है संयुक्त परिवार, यही बात करें तो बुजुर्गों का अनुभव बहुत सी बार बच्चों का मार्गदर्शक बनता है। संयुक्त परिवार में बुजुर्ग सबसे बड़ी ताकत होते हैं। उन्होंने जीवन के अनेक उतार चढ़ाव देखे हुए होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: वे बच्चों और युवाओं को समय का महत्व समझाते हैं। वे बताते हैं कि जीवन केवल मोबाइल स्क्रीन तक सीमित नहीं है। उनके अनुभव युवाओं को संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। बुजुर्गों की मौजूदगी परिवार में अनुशासन और संतुलन का वातावरण भी तैयार करती है। जागृति जी,
1: बिल्कुल
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि आज डिजिटल युग में अकेलापन एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। सोशल मीडिया पर हजारों मित्र होने के बावजूद कई लोग मानसिक रूप से अकेलापन महसूस करते हैं। संयुक्त परिवार जागृति जी इन समस्याओं का प्रभावी समाधान है। जब परिवार के लोग साथ होते हैं तो भावनात्मक सहयोग मिलता है, समस्याएं साझा की जाती हैं, तनाव कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है।
1: बिल्कुल।
0: इससे मोबाइल और सोशल मीडिया पर अत्यधिक निर्भरता भी कम होती है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि आज संयुक्त परिवारों को केवल परंपराओं का संरक्षण ही नहीं करना है बल्कि डिजिटल जागरूकता भी फैलानी है।
0: बिल्कुल।
1: परिवार के सदस्य मिलकर स्क्रीन टाइम के नियम बना सकते हैं। भोजन के समय मोबाइल का उपयोग न करना, परिवार के साथ समय बिताना और डिजिटल अवकाश लेना, ये सारे छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तकनीक का विरोध नहीं श्रोताओं, बल्कि उसका विवेकपूर्ण उपयोग ही आज की आवश्यकता है। आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि तकनीक हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन जीवन का केंद्र नहीं है। यदि डिजिटल साधनों का उपयोग संतुलित रूप से किया जाए तो वे विकास के साधन बनते हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन यदि उनका अत्यधिक उपयोग हो जाए तो वे रिश्ते और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। संयुक्त परिवार हमें सिखाते हैं अंजलि कि जीवन की असली शक्ति रिश्तों, संवाद, सहयोग और प्रेम में होती है।
0: बिल्कुल।
1: दादा दादी का अनुभव, माता पिता का मार्गदर्शन और परिवार का साथ डिजिटल संतुलन बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए श्रोता साथियों, आज आवश्यकता है कि हम तकनीक और परिवार दोनों के बीच संतुलन स्थापित करें।
0: बिल्कुल।
1: मोबाइल की रोशनी से अधिक महत्वपूर्ण परिवार के चेहरों की मुस्कान है। सोशल मीडिया के लाइक से अधिक मूल्यवान अपने लोगों का स्नेह है। इसलिए याद रखिए, जब परिवार साथ होता है तो जीवन की दिशा भी सही रहती है।
0: बिल्कुल।
1: तकनीक का उपयोग कीजिए, लेकिन उसे अपने रिश्तों पर हावी मत होने दीजिए। दिन का कुछ समय अपने परिवार के लिए जरूर निकालिए। दादा दादी की बातें सुनिए, माता पिता के साथ बैठिए, भाई बहनों के साथ हंसिए और अपने घर को केवल रहने की जगह नहीं बल्कि खुशियों का केंद्र बनाए, क्योंकि कहा गया है कि डिजिटल दुनिया रहे साथ पर परिवार न छूटे हाथ। यही संतुलन, यही पहचान और यही खुशहाल जीवन की शान है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि सामूहिक गतिविधियां बढ़ाती हैं डिजिटल संतुलन, यानी कि श्रोता साथियों संयुक्त परिवार में कई गतिविधियां मिलजुल कर की जाती हैं, जैसे कि सुबह की सैर, धार्मिक आयोजन, पारिवारिक बैठक, त्योहारों की तैयारी, खेल कूद, खेती और घरेलू कार्य। श्रोता साथियों, जब लोग इन गतिविधियों में शामिल होते हैं तो स्वाभाविक रूप से स्क्रीन टाइम कम होता है। इस प्रकार डिजिटल संतुलन बनाए रखना आसान हो जाता है। कहना चाहेंगे कि युवाओं पर आज सोशल मीडिया का सबसे अत्यधिक प्रभाव है।
1: बिल्कुल।
0: तुलना, दिखावा, लाइक्स की दौड़ में कई बार तनाव पैदा होता है। संयुक्त परिवार युवाओं को वास्तविक जीवन की सच्चाई से जोड़ता है। परिवार के सदस्य उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और सही दिशा दिखाते हैं। इससे युवा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं और डिजिटल दुनिया के दबावों में कम आते हैं।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि समय बदल रहा है, तकनीक बदल रही है और जीवन जीने के तरीके भी बदल रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन एक चीज है जो कभी पुरानी नहीं होती, वो है परिवार का प्यार, अपनापन और साथ। श्रोता, मोबाइल की बैटरी खत्म होने पर उसे चार्ज किया जा सकता है, लेकिन यदि रिश्तों की गर्माहट कम हो जाए तो उसे वापस लाने में बहुत समय लग जाता है।
0: बिल्कुल।
1: इसीलिए डिजिटल दुनिया में आगे बढ़िए, नई तकनीक सीखिए, अपने सपनों को पंख दीजिए, लेकिन अपने परिवार की उंगलियां कभी मत छोड़िए, क्योंकि जब जीवन की राह कठिन होती है तब इंटरनेट नहीं बल्कि परिवार का साथ हमारा सबसे बड़ा सहारा बनता है।
0: बिल्कुल।
1: तो श्रोता साथियों, अपने दिल और दिमाग में ये बात बैठा लीजिए कि हर दिन कुछ समय बिना मोबाइल के अपने परिवार के साथ आप बिताएंगे, उनकी बातें सुनेंगे, अपने मन की बातों को साझा करेंगे और रिश्तों को मजबूत बनाएंगे। यही छोटा कदम अंजलि हमें

0: डिजिटल संतुलन और खुशहाल जीवन की ओर ले जाता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम तकनीक को अपनाएं लेकिन रिश्तों को न भूलें। मोबाइल की स्क्रीन से निकलकर परिवार की मुस्कान को देखें, सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर आकर अपनों की बात सुने और डिजिटल सुविधा के साथ मानवीय मूल्यों को महत्व दें। याद रखिए श्रोता साथियों कि डिजिटल संतुलन का सबसे मजबूत आधार कोई ऐप या तकनीक नहीं है, बल्कि एक जागरूक, संवेदनशील और प्रेमपूर्ण परिवार है। और इस दिशा में संयुक्त परिवार की भूमिका वास्तव में अमूल्य और अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।
2: बिल्कुल अंजलि। तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ में, हमारे श्रोता साथियों को एक नई प्रेरणा और नई ऊर्जा के साथ में। और अब समय हो चला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा हम जरूर लेंगे, पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। अंत में बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि तकनीक हमें दुनिया से जोड़ सकती है, लेकिन परिवार हमें खुद से जोड़ता है। इसलिए स्क्रीन की चमक से आगे बढ़कर रिश्तों की रोशनी को पहचानिए, क्योंकि वही रोशनी जीवन भर आपका मार्गदर्शन करेगी।
1: बिल्कुल,
0: इन्हीं उम्मीदों के साथ आपके साथ विदा लेते हैं। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर भेजिएगा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनु, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाए
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: दोस्तों अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है जल्दी थकान होना शारीरिक कमजोरी याददाश्त में कमी सांस फूलना ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं लक्षण महसूस होने पर साथियों अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
4: थारी में पासो लावो जूनू हवार सेहत बनेगा एकदम शानदार बाजरा ज्वार रागी नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू बारती नु खवानो सोड़ो देशी अनाज तकी नातु जोड़ो
5: मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राकंगा
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग की प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाई न बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पिता ने उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान होवे। इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो जवाब मिलने तक परेशान करते हैं, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें हम बार बार सोचकर खुद ही बड़ा बना देते हैं। कभी कभी समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हमारी सोच उसे बना देती है। नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो फॉरवर्ड रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त अंजलि पारेश, लेकर हाजिर हो चुकी हूं श्रोता साथियों कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो जीवन की उन बातों को समझने की कोशिश करता है जो अक्सर हमारे आसपास तो होती है लेकिन हमारी नजर उन पर कम जाती है। आज का विषय है ज्यादा सोचना ही हमारी सबसे बड़ी परेशानी है। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा सवाल है जिससे शायद हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में जुड़ा है, चाहे वह छात्र हो, किसान हो, गृहिणी हो, युवा हो या बुजुर्ग। कभी न कभी हम सभी किसी बात को लेकर इतना सोचने लगते हैं कि वह सोच हमारी शांति छीन लेती है। तो आज कार्यक्रम में हमारी आपसे इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम के शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला यह गीत। आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं कि क्या ज्यादा सोचना ही हमारी सबसे बड़ी परेशानी है। जी हाँ श्रोता साथियों, ईश्वर ने मनुष्य को सोचने की शक्ति दी है। यही शक्ति हमें निर्णय लेने, भविष्य की योजना बनाने और समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करती है। लेकिन श्रोता साथियों, जब यही सोच नियंत्रण से बाहर हो जाती है ना, तब वह मददगार नहीं बल्कि बोझ बन जाती है। कई बार हम किसी छोटी सी बात को लेकर घंटों, दिनों और कभी कभी महीनों तक सोचते रहते हैं। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं असफल तो न हो जाऊं। इन सवालों का श्रोता साथियों कभी भी कोई भी अंत नहीं है। किसी ने कहा है कि सोच हमें आगे बढ़ाती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोच हमें वहीं खड़े कर देती है। इसलिए ज्यादा सोचने की आदत को हमें खुद से दूर करना है। और जो व्यक्ति ज्यादा सोचता है उसमें ये आदत कैसे बनती है, इस बारे में हम बात करें तो दोस्तों, अधिक सोचने की शुरुआत अक्सर चिंता से होती है। जब हमें किसी बात का डर होता है तब हमारा मन बार बार उसी विषय पर लौटता है और धीरे धीरे ये एक आदत बन जाती है। कुछ लोग हर निर्णय से पहले इतना सोचते हैं ना श्रोता साथियों कि निर्णय ही नहीं ले पाते। कुछ लोग बीते हुए समय की गलतियों को बार बार याद करते रहते हैं। कुछ लोग भविष्य की ऐसी घटनाओं की चिंता करते हैं जो शायद कभी हो ही नहीं। इस तरह श्रोता साथियों, हमारा मन वर्तमान से दूर होकर कल्पनाओं और आकांक्षाओं में भटकने लगता है। आपने भी श्रोता साथियों कभी महसूस किया हो तो सोचिएगा कि अक्सर हम कुछ ऐसी ऐसी बातों को लेकर चिंता करते हैं जो असल में चिंता करने लायक होती ही नहीं है। और जब हम इन सारी चीजों को लेकर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और उन चीजों को सोचते रहते हैं तो हमारी जो चिंता है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। और इसी तरीके से आज हम एक चीज को लेकर सोच रहे हैं तो कल दूसरी चीज को लेकर सोचेंगे और ये हमारी आदत का हिस्सा बन जाता है। और जब ये हमारी आदत का हिस्सा बन जाता है तो ज्यादा सोचने के जो नुकसान होते हैं वो हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा पड़ते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज्यादा सोचने के जो नुकसान है वो हमारी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। यानी कि दोस्तों, जब हम लगातार किसी बात में उलझे रहते हैं तो हमारा आत्मविश्वास कम होने लगता है, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है, नींद प्रभावित होती है, मन हमेशा बेचैन रहने लगता है और खुशी कम हो जाती है। धीरे धीरे व्यक्ति का काम से ज्यादा अपनी चिंताओं में व्यस्त रहना जरूरी हो जाता है उसके लिए। इसलिए किसी ने कहा है कि कई बार थकान शरीर से नहीं लगातार चलती सोच से पैदा होती है। तो दोस्तों, आपको मैं कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि ज्यादा सोचने की जो आदत है वो हमारे साथ साथ हमारे घर परिवार के सदस्यों पर भी असर करती है। इसलिए इस समस्या को समय रहते पहचान कर खुद को उससे दूर रखने की जरूरत है। इस समस्या का हल क्या हो सकता है ये कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको अवश्य बताऊंगी, लेकिन अभी मेरा मन कर रहा है एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं इस गीत को।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है, यहीं अब मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि क्या सोच से समस्या का हल होता है। तो दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि सोचना और समाधान ढूंढना दोनों अलग अलग बात है, लेकिन एक ही बात को बार बार दोहराते रहना समस्या का समाधान नहीं है। मान लीजिए कि किसी किसान की फसल खराब हो गई, अगर वह केवल यही सोचता रहे कि नुकसान क्यों हुआ तो उसकी स्थिति कभी नहीं बदलेगी, लेकिन वह यह सोचे कि अगली बार क्या सुधार किया जा सकता है और किसी व्यक्ति से परामर्श ले तो उसकी सोच उपयोगी बन सकती है। यानी कि श्रोता साथियों, इस बात से हमें साफ पता चलता है कि सोच तब लाभदायक है जब तक वह हमें कार्य की ओर ले जाए, और जब सोच हमें केवल चिंता की ओर ले जाती है तो वो हमें नुकसान पहुंचाती है। देखते हैं ना श्रोता साथियों कि अक्सर हम अपने मन को आराम नहीं देते। जैसे शरीर को विश्राम चाहिए होता है, वैसे ही मन को भी चाहिए होता है, लेकिन हम लगातार हर किसी से तुलना करते रहते हैं, भविष्य की चिंता करते रहते हैं। और अक्सर हमने देखा है कि बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो बीती बातों को याद करते करते अपने मन की चिंता को बढ़ा देते हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि हमारा जो मन है वो हमेशा ऐसी बातों को लेकर चिंता में रहता है जो चिंता करने लायक ही नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, हर रास्ता पहली नजर में साफ नहीं दिखता। कुछ बातें समय को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि हर गांठ सोच से नहीं धैर्य से खुलती है। इसलिए श्रोता साथियों, आज के समय में ज्यादा सोचने का एक बड़ा कारण तुलना भी है। हम दूसरों की सफलता को देखते हुए बहुत सारी चीजें सोच लेते हैं कि मैं क्यों पीछे हूँ, मेरे पास वह क्यों नहीं है, मैं उतना अच्छा क्यों नहीं हूँ। तो श्रोता साथियों, यही जो तुलना की चीजें हैं वो धीरे धीरे हमारी जिंदगी की खुशियों को छीन लेती है। कहना चाहूंगी कार्यक्रम के माध्यम से कि हर व्यक्ति की परिस्थितियाँ, क्षमताएं और यात्रा अलग होती है, इसलिए हमें कभी भी हमारी तुलना किसी और व्यक्ति से नहीं करनी है। हम हमारी कहानी खुद लिख सकते हैं, पर हमारी कहानी किसी और व्यक्ति की कहानी से मेल नहीं खा सकती। इसलिए हमेशा अधिक सोचने की जो चीजें हैं उसे अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। सोचना है तो उसका समाधान ढूंढें। उस समस्या के समाधान के साथ आपको कई ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपकी जिंदगी को बदल देंगी। यही बात आती है दोस्तों कि क्या अधिक सोचने वाले लोग कमजोर होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अधिक सोचने वाले लोग अक्सर संवेदनशील और जिम्मेदार होते हैं, वे हर बात को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन समस्या तब होती है जब संवेदनशीलता चिंता में बदल जाती है। इसलिए जरूरत सोच को खत्म करने की नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा देने की है। इसलिए हमें हमारी जिंदगी को थोड़ा सा सरल बनाना है। इसके लिए हमें ये करना होगा कि हमें हर बात का जवाब आज नहीं मिल रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो हमें कभी नहीं मिलेगा, वो हमें अवश्य मिलेगा। उसके लिए हमें धैर्य को बनाए रखना है। हर योजना पूरी तरीके से सफल हो ये भी जरूरी नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सी बार कोई व्यक्ति अगर किसी चीज को लेकर योजना बना रहा है और उसकी योजना में वो सफल नहीं होता है तो अगली बार से वो योजना बनाना ही बंद कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें हमारे जीवन में एक योजना से सफलता नहीं मिल रही है तो हमें उस प्रयास को निरंतर जारी रखना है। एक वक्त ऐसा आएगा जब हम हमारी योजना को सफल बना पाएंगे। हमें हर व्यक्ति की चीजों को समझना है। कुछ चीजें अनिश्चित होती हैं जीवन में, उनको भी हमें स्वीकार करने की जरूरत है। कहते हैं ना कि जिंदगी को समझने की कोशिश अच्छी है, लेकिन जिंदगी को जीना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने मन को शांत रखने की चीजों के बारे में सोचिए। इसके लिए आप कुछ छोटे छोटे उपाय अपना सकते हैं, जैसे कि आप अपनी चिंता को डायरी में लिख लीजिए, या अपने ऐसे किसी व्यक्ति से साझा कीजिए जिस पर आप भरोसा करते हैं। इसी के साथ जो आपके नियंत्रण में नहीं है उन सारी चीजों पर ध्यान दीजिए। हर समस्या का हल तुरंत खोजने की कोशिश मत कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। परिवार और मित्रों से बातचीत कीजिए, अपने शौक और रुचियों के लिए समय निकालिए, क्योंकि
यह जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिससे हम अपने मन को खुश रख सकते हैं और वर्तमान के क्षण को जीने की आदत डालिए। तो श्रोता साथियों, इस तरीके से कार्यक्रम में हम जान पाए कि ज्यादा सोचना किस तरीके से हमारे जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी बन सकता है। यही आपको अंत में कहना चाहूंगी कि सोचना हमारी शक्ति है, लेकिन वही शक्ति जब कमजोरी बन जाती है दोस्तों, तब वह हमें वर्तमान से दूर कर देती है। जीवन की हर समस्या का समाधान केवल सोचने से नहीं बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने से आता है। हमें यह समझना होगा कि हर बात हमारे नियंत्रण में हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ प्रयास और कुछ ऐसी चीजें जो जीवन में बदलनी जरूरी है, उनके माध्यम से हम हमारे जीवन को बदल सकते हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मन को हर समय सवालों का घर मत बनाइए, कुछ खिड़कियां उम्मीद के लिए खुली रखिए। जिंदगी केवल सोचने के लिए नहीं मिली है, यह हमें महसूस करने, सीखने और जीने के लिए मिली है। तो अपनी जिंदगी का आनंद लीजिए और अपने मन को शांत रखिए। आशा करती हूँ कि कार्यक्रम में जो बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के साथ ही अब मैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आज कार्यक्रम में मेरी आपसे जो बातचीत रही है, जो गीत संगीत रहे हैं, वो आपको अवश्य पसंद आए होंगे। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: बिल्कुल
1: मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है कि मन की कमजोरी को ताकत में कैसे बदले।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी ऐसी स्थिति से गुजरता है जब उसे लगता है कि वह कमजोर और असफल है या परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकता। कभी डर हमें रोकता है, कभी आत्मविश्वास की कमी हमें पीछे खींचती है, तो कभी दूसरों की बातें हमारे मन को कमजोर बना देती है।
0: जी हाँ।
1: लेकिन श्रोता साथियों, क्या आपने सोचा है कि जिस कमजोरी को हम अपनी सबसे बड़ी परेशानी मानते हैं वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।
0: जी हाँ।
1: तो आज कार्यक्रम में मनीषा हमारी श्रोता साथियों से इसी विषय पर बातें रहेंगी, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए पहला गीत हम हमारे साथियों को सुनवा दें।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।

0: दोस्तों इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं मन की कमजोरी को ताकत में कैसे बदलें।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल शरीर की शक्ति से नहीं चलता बल्कि उसके मन की शक्ति भी उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यदि मन मजबूत हो तो कठिन परिस्थितियां भी आसान लगने लगती हैं। लेकिन वहीं अंजलि जी, अगर मन कमजोर हो तो छोटी सी समस्या है वो भी हमें पहाड़ जैसी लगती है। मन की कमजोरी एक ऐसी स्थिति है साथियों जिसमें व्यक्ति स्वयं पर विश्वास खोने लगता है, निर्णय लेने से डरता है और असफलता से घबराता है, और साथ ही हम देखते हैं कि जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाने लगता है।
1: बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि मन की कमजोरी का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति में योग्यता नहीं है
0: जी?
1: उसका अर्थ है कि व्यक्ति अपनी क्षमता पर विश्वास खो देता है। जब हम बार बार मनीषा नकारात्मक सोचते हैं, छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं, आलोचना से टूट जाते हैं या कठिन परिस्थितियों से भागने लगते हैं, तब मन कमजोर होने लगता है। मन की कमजोरी कई रूपों में दिखाई देती है
0: जी हाँ।
1: असफलता का डर, आत्मविश्वास की कमी, निर्णय लेने में हिचकिचाहट, दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता, निराशा और हताशा और हर समय चिंता करना। लेकिन अच्छी बात यह है कि मन की कमजोरी कोई स्थायी स्थिति नहीं है, इसे बदला जा सकता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज के समय में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, तनाव, सामाजिक दबाव और अनेक प्रकार की चुनौतियों के कारण बहुत से लोग मानसिक रूप से कमजोर महसूस करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: विशेष रूप से हम देखते हैं कि युवा वर्ग में आत्मविश्वास की कमी, चिंता, डर और असफलता का भय बढ़ता दिखाई देता है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन श्रोता साथियों, अच्छी बात यह है कि मन की कमजोरी कोई स्थायी स्थिति नहीं है। उच्च सोच, सकारात्मक प्रयास और निरंतर अभ्यास के माध्यम से अंजलि जी, इसे हम ताकत में बदल सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि मनुष्य जन्म से कमजोर नहीं होता, परिस्थितियां और अनुभव उसके मन को प्रभावित करती हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि लगातार असफलताओं के कारण, यानी कि जब व्यक्ति बार बार असफल होता है तो वह स्वयं को अयोग्य समझने लगता है।
0: जी हाँ।
1: हर समय खुद को तुलना करना, दूसरों से अपनी चीजों को कंपेयर करके हम देखते हैं कि मनुष्य का जो मन है वो कमजोर बन जाता है।
0: जी हाँ।
1: यदि परिवार, मित्र या समाज हमेशा नकारात्मक बातें करे मनीषा, तो व्यक्ति का आत्मविश्वास कम होने लगता है।
0: बिल्कुल,
1: बहुत से लोग श्रोता साथियों अपनी इच्छाओं को भूल कर केवल कमियों पर ध्यान देते हैं। भविष्य की चिंता और अनजाने डर भी मन को कमजोर बनाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए हम कह सकते हैं कि मन की कमजोरी पैदा होने के ये कई कारण है जिसकी वजह से ये पैदा होती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। यही अगर हम बात करें कि मन की कमजोरी क्या है, तो हम देखते हैं कि मन की कमजोरी का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता नहीं रखता। श्रोता साथियों, इसमें क्षमता नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं कर पाता।
1: बिल्कुल,
0: जब मन में डर, संकोच, नकारात्मक और असुरक्षा की भावना होती है, तो अंजलि जी हम देखते हैं कि हमारा मन है वो पहले से ज्यादा कमजोर होने लगता है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: हमें खुद पर विश्वास नहीं होता, इस तरीके से हम आगे नहीं बढ़ पाते।
1: जी हाँ, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि कई लोग अपनी कमियों से लड़ते रहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि बदलाव की शुरुआत स्वयं को स्वीकार करने से होती है। जब हम अपनी कमजोरियों को पहचान लेते हैं और उन्हें सुधारने का संकल्प लेते हैं मनीषा, तभी विकास की राह खुलती है।
0: जी हाँ।
1: याद रखिए श्रोता साथियों कि कमजोरी छिपाने से नहीं, उसे स्वीकार करने से ताकत पैदा होती है।
0: बिल्कुल।
1: यहीं अब बात आती है सकारात्मक सोच के महत्व की। तो श्रोता साथियों, मन वही बनता है जो हम जब हम उसमें बार बार जिन बातों को विचार के तौर पर डालते हैं।
0: जी हाँ।
1: यदि हम हर दिन स्वयं से कहेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं असफल हूँ, मेरे बस की ये बात नहीं है, तो मन कमजोर होता जाएगा।
0: जी हाँ।
1: लेकिन मनीषा, हम यदि यह कहेंगे कि मैं सीख सकता हूँ, मैं प्रयास कर सकता हूँ, मैं पहले से बेहतर बन सकता हूँ, तो मन मजबूत होने लगेगा।
0: बिल्कुल।
1: सकारात्मक सोच श्रोता साथियों कोई जादू नहीं है, बल्कि अपने मन को सही दिशा देने की कला है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि हर समय चिंता करना, छोटी छोटी बातों से घबराना, आत्मविश्वास में कमी और निर्णय लेने में कठिनाइयां आना और बार बार असफलता का डर दूसरों की तुलना हमें करना सिखा देता है।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, नकारात्मक सोच हमारी इससे बढ़ने लगती है और हमारी जिम्मेदारियां हैं वो भी घट जाती हैं। अगर श्रोता साथियों समय रहते इन लक्षणों पर हम ध्यान दें, तो हमारा मन है वो पहले से ज्यादा मजबूत बन सकता है। साथ ही हम देखते हैं कि जब व्यक्ति अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं करता है अंजलि जी, तब उसका मन है वो पहले से ज्यादा कमजोर हो जाता है। वह हर कार्यों को असफलता की आकांक्षा से देखता है। हम देखते हैं कि नकारात्मक विचार हैं वो भी धीरे धीरे हमारे मन को कमजोर बना देते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में केवल बुराई देखता है श्रोता साथियों, वह मानसिक रूप से मजबूत नहीं बन पाता।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हम श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें कर पा रहे हैं कि मन जब कमजोर हो जाता है तो हमारे साथ क्या क्या स्थिति रहती है और किस तरीके से हमें उसे कमजोर नहीं होने देना है। ये बातें निरंतर आगे कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों के साथ बनी रहेंगी, लेकिन अभी मन कर रहा है एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वाग रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही मनीषा श्रोता साथियों से कहना चाहेंगी कि जीवन में सफल व्यक्ति वह नहीं है जिसने कभी असफलता नहीं देखी, बल्कि वह है जिसने असफलता से सीखना सीखा। जब भी कोई काम बिगड़े, स्वयं से पूछिए कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ।
1: जी हाँ,
0: हर असफलता एक अनुभव है और हर अनुभव हमें मजबूत बनाता है।
1: बिल्कुल,
0: कई बार बड़े लक्ष्य देखकर हम घबरा जाते हैं, इसलिए बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। हर छोटी सफलता मन में विश्वास पैदा करती है, धीरे धीरे यही विश्वास मानसिक शांति बन जाता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि बहुत से लोग केवल इसलिए प्रयास नहीं करते क्योंकि उन्हें असफलता का डर रहता है। यह डर उन्हें धीरे धीरे उनके मन में ही वो शक्ति को कम कर देता है। साथ ही हम देखते हैं कि अपनी तुलना दूसरों से करने पर व्यक्ति अपनी खूबियों को भूल जाता है और अपनी कमियों पर ध्यान देने लगता है।
0: बिल्कुल,
1: इससे हम देखते हैं कि हमारा आत्मविश्वास है वो भी कम हो जाता है। यहीं अगर अकेलेपन की बात करें तो हम देखते हैं कि जब व्यक्ति अपने विचार किसी के साथ साझा नहीं करता है अंजलि जी, तब भी उसके मन के भीतर तनाव बढ़ता जाता है। श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि परिवार, मित्रों या समाज की आलोचना भी व्यक्ति को कमजोर कर सकती है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा, डर से भागने पर डर बढ़ता है। डर का सामना करने पर डर घटता है। यदि किसी को लोगों के सामने बोलने से डर लगता है तो उसे धीरे धीरे बोलने का अभ्यास करना चाहिए। यदि किसी को किसी काम में असफल होने का डर है तो उसे प्रयास करना चाहिए। श्रोता साथियों, हर बार जब हम अपने डर का सामना करते हैं हमारा मन थोड़ा और मजबूत हो जाता है। कहना चाहेंगे कि मनुष्य अपने आसपास के लोगों से बहुत प्रभावित होता है। यदि हम ऐसे लोगों के बीच रहें जो हमें प्रोत्साहित करें, प्रेरित करें और हमारी अच्छाइयों को पहचाने तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए ऐसी संगति चुनिए श्रोता साथियों जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं मनीषा कि स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति का भी एक दूसरे से संबंध है, यानी कि दोस्तों स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है।
1: जी हाँ।
0: इसके लिए हमें नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन, योग और ध्यान करना होगा। ये सभी मानसिक शक्ति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जब शरीर स्वस्थ रहता है श्रोता साथियों तो मन भी अधिक स्थिर और मजबूत रहता है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, यदि यही

0: अगर हम बात करें कि मन की कमजोरी को पहचानना क्यों जरूरी है, तो हम देखते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान तभी संभव होता है जब हम अपने अंदर के डर को पहचानते हैं।
1: बिल्कुल।
0: यदि व्यक्ति यह स्वीकार कर ले कि उसके मन में डर है, संकोच है या आत्मविश्वास की कमी है, तो वह सुधार की दिशा में अपने कदम है वो आगे बढ़ा सकता है। श्रोता साथियों, मन की कमजोरी को छिपाने के बजाय उसे समझना और स्वीकार करना ही हमारी मानसिक मजबूती की पहली सीढ़ी है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि कई लोग जो हैं वो तुरंत परिणाम चाहते हैं।
0: जी हाँ।
1: जब परिणाम नहीं मिलता तो वे निराश हो जाते हैं, लेकिन मन की ताकत जो है वो धीरे धीरे विकसित होती है। जैसे पौधा एक दिन में वृक्ष नहीं बनता, वैसे ही मानसिक मजबूती भी समय और अभ्यास से ही आती है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें अपनी उपलब्धियों को याद करना है, हर दिन कुछ नया सीखना है, स्वयं की प्रशंसा करनी है, अपनी प्रगति पर ध्यान देना है और गलतियों से आत्मविश्वास होता साथियों जन्मजात नहीं होता, इसे मेहनत से विकसित किया जाता है। हम कहना चाहेंगे मनीषा श्रोता साथियों से कि इतिहास जो है वो ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों को अपनी ताकत बनाया। कई लोगों ने गरीबी, असफलता, बीमारी और संघर्ष का सामना किया,
0: जिन्होंने
1: हार नहीं मानी, उन्होंने अपनी कमजोरियों को बहाना नहीं बनाया बल्कि उन्हें सफलता की सीढ़ी बना लिया। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका मजबूत मन ही था।
0: बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें कि हमारा मन है वो उस मन की कमजोरी को ताकत में कैसे बदले, तो हम देखते हैं श्रोता साथियों कि मन की कमजोरी है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी शक्ति नहीं होती है। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेष गुण होते हैं अंजलि जी। अगर वह अपनी खूबियों को पहचाने, स्वयं पर भरोसा करी, हर व्यक्ति चाहे वो खुद से कहे कि मैं सक्षम हूँ, मैं सीख सकता हूँ, तो वो हर कठिनाइयों का सामना आसानी से कर सकता है।
1: बिल्कुल।
0: इसीलिए श्रोता साथियों, हमेशा प्रयास करते रहें और खुद पर भरोसा रखें।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि परिवार और समाज यदि हर किसी को प्रोत्साहन दे तो व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है।
0: जी हाँ।
1: हमें चाहिए कि बच्चों को हम प्रोत्साहित करें, असफल व्यक्ति का मजाक न उड़ाएं, महिलाओं और युवाओं का मनोबल बढ़ाएं, बुजुर्गों का सम्मान करें और एक दूसरे की भावनाओं को समझें। जब समाज सहयोग करता है तो कमजोर मन भी मजबूत बन जाता है।
0: बिल्कुल।
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं है मनीषा, बल्कि अपने मन से होती है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना कर सकता है।
0: जी हाँ।
1: मन की कमजोरी कोई अभिशाप नहीं है, यह केवल एक ऐसी अवस्था है जिसे सही सोच, निरंतर प्रयास, धैर्य और आत्मविश्वास के माध्यम से ताकत में बदला जा सकता है।
0: जी हाँ।
1: जीवन में आने वाली चुनौतियां हमें तोड़ने के लिए नहीं श्रोता साथियों, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है।
0: बिल्कुल।
1: हर संघर्ष के भीतर एक सीख छिपी होती है और हर कठिनाई के भीतर एक नई संभावना। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपका मन कमजोर पड़ रहा है, तब श्रोता साथियों हार मानने के बजाय स्वयं को याद दिलाइए कि आपके भीतर असीम शक्ति छिपी हुई है।
0: जी हाँ।
1: जरूरत केवल उसे पहचानने और जगाने की है। जिस दिन मनीषा व्यक्ति अपने डर से ऊपर उठना सीख जाता है, अपनी असफलताओं से सीखना सीख जाता है, स्वयं पर विश्वास करना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए आज हमें संकल्प लेना है कि हम अपनी कमजोरी से भागेंगे नहीं, बल्कि उसे अपनी शक्ति का आधार बनाएंगे।
0: जी हाँ।
1: क्योंकि मजबूत मन ही सच्चे स्वराज की पहली पहचान है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कहना चाहेंगी कि असफलता है वो जीवन का अंत नहीं है, यह हमारे लिए सीखने का अवसर है। साथियों, दुनिया के अनेक सफल लोग हैं, उन्होंने कई बार असफलताओं का सामना किया है, उन्होंने असफलताओं का सामना करते हुए सफलता को प्राप्त किया है। श्रोता साथियों, डर हमें असफलता की ओर ले जाती है, इसलिए श्रोता साथियों सबसे पहले हमें अपने अंदर के डर को समाप्त करना है और हमें हमारी मेहनत पर ध्यान देना और आगे बढ़ने की कोशिश करनी है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन क्यों ना हम हमारे साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, हमारी बातें चल रही थी कि मन की कमजोरी को ताकत में कैसे बदलें।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही अंजलि जी अगर बात करें कि सकारात्मक सोच कैसे विकसित करें, तो हम देखते हैं कि सकारात्मक सोच मन को मजबूत बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। समस्याओं को श्रोता साथियों समस्या की तरह नहीं बल्कि अवसर की तरह देखना सीखें।
1: बिल्कुल।
0: हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाती है साथियों। जो व्यक्ति परिस्थितियों में भी घबराता नहीं है और उम्मीद नहीं खोता है अंजलि जी, उसका मन धीरे धीरे मजबूत होने लगता है।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही श्रोता साथियों, छोटे छोटे लक्ष्य बनाए। हम देखते हैं कि बड़े लक्ष्य देखकर कई बार अंजलि जी हमारा मन है वो घबरा जाता है। इसीलिए श्रोता साथियों, छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उसे पूरा करने की कोशिश करें। तब हम देखते हैं कि अंजलि जी, अगर हम छोटे लक्ष्य बनाते हैं तो इसका हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हमारा मन है वो भी मजबूत होता है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। हमारे श्रोता साथियों को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बात समझाना चाहेंगी। गाँव भेरूपुरा की एक लड़की थी सुमन। वह पढ़ाई में अच्छी थी, स्वभाव से सरल थी और सबका सम्मान करती थी।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन उसके अंदर एक बड़ी कमजोरी थी, उसे खुद पर भरोसा नहीं था।
0: जी हाँ।
1: वह हर काम शुरू करने से पहले ही सोच लेती कि वह सफल नहीं हो पाएगी। यदि स्कूल में भाषण प्रतियोगिता होती तो सुमन का नाम सुनते ही उसके हाथ पैर कांपने लगते।
0: जी हाँ।
1: यदि कोई नया काम मिलता तो वह कहती, यह मुझसे नहीं होगा। गाँव के दूसरे बच्चे उसे समझाते लेकिन उसके मन में बैठा डर आसानी से नहीं निकल पाता था। सुमन की माँ अक्सर कहती थी, बेटी, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका मन होता है। अगर मन हार जाए तो जीत भी हार जैसी लगती है।
0: जी
1: और
0: हाँ।
1: अगर मन जीत जाए तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। लेकिन सुमन इन बातों को सुनकर मुस्कुरा देती और फिर अपने काम में लग जाती। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई कि जिले स्तर पर भाषण प्रतियोगिता होने वाली है। स्कूल के प्रधानाचार्य चाहते थे कि सुमन भाग ले, क्योंकि वह पढ़ाई में तेज थी और उसके विचार भी अच्छे थे।
0: जी हाँ।
1: सर, प्रधानाचार्य ने जब उसका नाम लिया तो सुमन घबरा गई। सर, मैं नहीं कर पाऊंगी। सर ने कहा, क्यों? मुझे लोगों के सामने बोलने में डर लगता है।
0: जी हाँ।
1: प्रधानाचार्य मुस्कुराए और बोले, डर होना बुरी बात नहीं है, डर के कारण रुक जाना बुरी बात है। लेकिन सुमन ने प्रतियोगिता में भाग लेने से मना कर दिया। कुछ दिनों बाद गांव में एक बुजुर्ग शिक्षक आए, उनका नाम था रामनारायण लाल जी। उन्होंने जीवन भर बच्चों को पढ़ाया था और अब सेवानिवृत्त होकर गांव में रहने लगे थे। एक दिन सुमन उदास बैठी थी। रामनारायण जी ने पूछा कि क्या बात है बेटी? सुमन ने अपनी परेशानी बता दी। रामनारायण जी कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने बताया कि एक किसान था जिसके पास एक छोटा सा पौधा था।
0: बिल्कुल।
1: हर दिन तेज हवा चलती और पौधा झुक जाता। किसान सोचता कि यह पौधा बहुत कमजोर है, लेकिन कुछ वर्षों बाद वही पौधा एक विशाल वृक्ष बन जाता है।
0: जी हाँ।
1: अब आंधी आती है, तूफान आता है, लेकिन वृक्ष मजबूती से खड़ा रहता है। सुमन ने पूछा, लेकिन ऐसा कैसे हुआ? रामनारायण लाल जी बोले, क्योंकि उस पौधे ने हर दिन हवा का सामना किया। यदि वह हवा से बचता रहता तो कभी मजबूत नहीं बनता। यह बात सुमन के मन में बैठ गई। अगले दिन उसने फैसला किया कि वह अब अपने डर से भागेगी नहीं। उसने घर के आंगन में खड़े होकर भाषण बोलने का अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में उसकी आवाज कांपती थी, कभी कभी शब्द भूल जाती थी, कभी हंसी आ जाती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पहले दिन 5 मिनट बोली, दूसरे दिन 10 मिनट, फिर उसने अपनी छोटी बहन के सामने बोलना शुरू किया।
0: जी हाँ।
1: धीरे धीरे वह पड़ोस की महिलाओं के सामने भी बोलने लगी। कुछ सप्ताह बाद उसका डर अब पहले से कम हो गया। इसी बीच गाँव में एक और समस्या आई। गांव की तालाब की सफाई कई वर्षों से नहीं हुई थी। बरसात आने वाली थी और तालाब गंदगी से भरा हुआ था।
0: जी हाँ।
1: ग्राम सभा में इस विषय पर चर्चा हुई लेकिन कोई आगे नहीं आया। सुमन भी वहां बैठी थी। उसके मन में कई अच्छे विचार थे लेकिन वह बोलने से डर रही थी। तभी उसे रामनारायण जी की बात याद आई, डर के कारण रुक जाना बुरी बात है। उसने हिम्मत जुटाई और हाथ उठाया।
0: जी हाँ।
1: सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था लेकिन उसने बोलना शुरू किया, यदि हम सब मिलकर एक दिन श्रमदान करें तो तालाब की सफाई हो सकती है।
0: जी हाँ।
1: गांव वालों ने उसकी बात ध्यान से सुनी। फिर उसने सफाई अभियान की पूरी योजना बनाई। उस दिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि लोग उसकी बात सुन रहे हैं। कुछ ही दिनों में पूरा गांव सफाई अभियान में जुट गया। तालाब साफ हो गया। गांव के बुजुर्गों ने सुमन की प्रशंसा की। अब उसके अंदर थोड़ा आत्मविश्वास आने लगा। कुछ समय बाद फिर वही जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता आई। इस बार प्रधानाचार्य ने पूछा, सुमन क्या अब भी डर लगता है? सुमन मुस्कुराई और बोली, हाँ सर, डर तो लगता है, लेकिन अब मैं डर के कारण रुकूंगी नहीं। प्रतियोगिता के दिन सैकड़ों छात्र वहां मौजूद थे। मंच बहुत बड़ा था। सुमन का नाम पुकारा गया। एक पल के लिए उसका मन फिर घबराया, लेकिन उसने गहरी सांस ली और मंच पर चली गई। उसने बोलना शुरू किया। शुरुआत में हल्की घबराहट थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसका आत्मविश्वास लौट आया। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना भाषण पूरा किया। जब वह मंच से नीचे उतर रही थी तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। परिणाम घोषित हुआ। सुमन को प्रथम पुरस्कार मिला। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमें अपने डर को दूर करने के लिए प्रयास करते रहना है। डर सभी को लगता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग डर के आगे रुक जाते हैं तो कुछ लोग डर का हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: उसने बच्ची को भी यही कहानी सुनाई जो उसके साथ रहा करती थी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये कहानी हमें सीख देती है कि मनुष्य की असली शक्ति उसके शरीर में नहीं, उसके मन में होती है।
0: जी हाँ।
1: जो अपने मन को मजबूत बना लेता है उसके लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी। इसी के साथ हम देखते हैं कि जीवन की चुनौतियां व्यक्ति के वास्तविक चरित्र को निखारती हैं। जब व्यक्ति संघर्ष करता है, कठिनाइयों का सामना करता है और समस्याओं से लड़ता है, तब उसका अनुभव बढ़ता है। यही अनुभव श्रोता साथियों आगे चलकर हमारी ताकत बन जाता है। जैसे अंजलि जी हम देखते हैं कि सोना आग में तपकर अधिक चमकदार बनता है,
1: बिल्कुल
0: वैसे ही मनुष्य संघर्षों से गुजर कर मजबूत बनता है। श्रोता साथियों, आज का युवा अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। पढ़ाई का दबाव, करियर की चिंता, प्रतियोगिता और सामाजिक अपेक्षाएं कई बार अंजलि जी हम देखते हैं कि मन को कमजोर कर देती हैं ये सारी चीजें। युवाओं को समझना चाहिए कि वे हर व्यक्ति की सफलता की गति अलग अलग होती है। गलतियां श्रोता साथियों हमारे सीखने का अवसर होती है। साथ ही हम देखते हैं कि आत्मविश्वास अभ्यास से बढ़ता है। कठिन समय श्रोता साथियों हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि निरंतर प्रयास सफलता का मार्ग बनता है। यदि युवा अपने मन को मजबूत बना ले अंजलि जी, तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो कार्यक्रम में बातें बहुत अच्छी चल रही हैं, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी करते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही मनीषा श्रोता साथियों से कहना चाहेंगी कि मन की मजबूती किसी पुस्तक से नहीं मिलती, न ही यह किसी एक दिन में विकसित होती है। यह जीवन के अनुभवों, संघर्षों, गलतियों और उनसे मिली सीख का परिणाम होती है।
1: बिल्कुल,
0: जब व्यक्ति अपने भीतर झांक कर अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानता है, तब उसे एहसास होता है श्रोता साथियों कि उसकी सीमाएं उतनी बड़ी नहीं है जितनी वह समझ रहा था।
1: बिल्कुल,
0: अक्सर हमारी सबसे बड़ी रुकावट हमारी परिस्थितियां नहीं बल्कि उनके सामने हमारी सोच होती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि जब व्यक्ति के मन की कमजोरी को वो ताकत में बदल लेता है, तब उसके जीवन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। जैसे कि उसका आत्मविश्वास है वो भी बढ़ जाता है, निर्णय लेने की क्षमता है वो विकसित होती है, तनाव कम होता है, उनके संबंध है वो बेहतर होते हैं, कार्य क्षमता बढ़ती है। साथ ही श्रोता साथियों, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित होता है। श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि सफलता प्राप्त करने की संभावनाएं भी इससे बढ़ सकती हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा, जीवन में अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब मन टूटता है, उम्मीदें कमजोर पड़ती हैं और रास्ते धुंधले दिखाई देने लगते हैं। ऐसे समय में आवश्यकता हार मानने की नहीं बल्कि स्वयं को संभालने की होती है।
1: जी हाँ,
0: हर चुनौती हमें यह अवसर देती है कि हम अपने भीतर छिपे साहस, धैर्य और आत्मविश्वास को खोज सकें। जो व्यक्ति कठिन समय में भी सीखने और आगे बढ़ने का प्रयास करता है, वही धीरे धीरे मानसिक रूप से सशक्त बनता है। यह भी हमें याद रखना है मनीषा कि मन की शक्ति का अर्थ केवल सफलता प्राप्त करना नहीं है बल्कि सच्ची मानसिकता तक ताकत वह है जो व्यक्ति को असफलता में भी संतुलन देती है, आलोचना में भी शांत रखती है और संघर्षों के बीच आशा बनाए रखने की प्रेरणा देती है।
1: जी हाँ,
0: मजबूत मन वाला व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता श्रोता साथियों, बल्कि अपने विचारों और कर्मों से परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करता है। हम अपने जीवन में ऐसी आदतें विकसित करें श्रोता साथियों जो हमें भीतर से मजबूत बनाए। आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच, निरंतर प्रयास, धैर्य और आत्मचिंतन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए। जब हम मजबूत होंगे तो जीवन की राहें भी अधिक स्पष्ट दिखाई देंगी और चुनौतियां जो हैं वो अवसरों में बदलती नजर आएंगी।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसके मन की शक्ति होती है। जो स्वयं पर विश्वास करता है वो दुनिया की किसी भी चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकता है। हम देखते हैं श्रोता साथियों की कमजोरी कोई दोष नहीं बल्कि सुधार का अवसर है। हर दिन स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करें साथियों। साथी श्रोता साथियों, साहस का अर्थ डर का अभाव नहीं होता है बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना होता है। साथी अंजलि जी, कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कहना चाहेंगी कि मन की कमजोरी जीवन की एक सामान्य स्थिति है, लेकिन इसे स्थायी भाग्य नहीं माना जा सकता। श्रोता साथियों, सही सोच, आत्मविश्वास, सकारात्मक दृष्टिकोण, योग, ध्यान, निरंतर सीखने की आदत और संघर्षों से मिलने वाले अनुभव से हम धीरे धीरे इसे हम ताकत में बदल सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जो व्यक्ति अपने डर का सामना करता है अंजलि जी, अपनी कमियों को स्वीकार करता है और उसे सुधारने का प्रयास करता है, तो वही वास्तविक अर्थों में मानसिक रूप से मजबूत बनता है।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए श्रोता साथियों, हमें याद रखना चाहिए कि मन की शक्ति किसी भी बाहरी शक्ति से बड़ी होती है। यदि मन दृढ़ है तो जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां भी हमें सरल लगने लगती है। इसीलिए श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि स्वयं पर विश्वास रखें, सकारात्मक सोच रखें और निरंतर प्रयास करने का प्रयास करें और अपनी कमजोरियों को पहचाने और उसमें कार्य करने की कोशिश करें। इससे हम देखते हैं अंजलि जी कि हमें हमारे जीवन में हमें अच्छी प्रेरणाएं भी मिलती है, आगे बढ़ने में भी हमें मदद मिलती है और हमारी आत्मविश्वास है वो भी मजबूत होता है।
0: बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी विजय किसी और पर नहीं बल्कि स्वयं की कमजोरियों पर होती है।
1: जी हाँ,
0: जिस दिन हम अपने डर, संकोच और नकारात्मक सोच पर नियंत्रण पाना सीख लेते हैं, उसी दिन से हमारा व्यक्तित्व नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगता है। इसलिए अपने मन को बोझ नहीं अपनी सबसे बड़ी पूंजी समझिए, उसे सही दिशा दीजिए, उसे आशा से भरिए और उसे विश्वास का सहारा दीजिए, क्योंकि मजबूत मन ही सुखी, सफल और सार्थक जीवन की वास्तविक नींव है। मनुष्य का जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि उसकी आंतरिक दृढ़ता से आकार लेता है। दुनिया की सबसे कठिन परिस्थितियां भी उस व्यक्ति को नहीं हरा सकती जिसने अपने भीतर उम्मीद की लौ जलाए रखी हो। इसलिए मन की शक्ति को बढ़ाना केवल व्यक्तिगत विकास का विषय नहीं है मनीषा, बल्कि बेहतर जीवन जीने की आवश्यक कला है।
1: जी हाँ,
0: हम अक्सर सोचते हैं कि साहसवान लोग कभी डरते कभी नहीं डरते, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। साहस वही है जो भय, असमंजस्य और अनिश्चितता के बीच भी सही दिशा में कदम बढ़ाने की प्रेरणा देता है।
1: जी हाँ।
0: जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए आती है कि हम वास्तव में कितने सक्षम हैं। हर चुनौती अपने साथ एक अवसर लेकर आती है, स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर। जब व्यक्ति अपने मन को नकारात्मकता, हीन भावना और निराशा से मुक्त करना शुरू करता है, तब उसके सोचने का तरीका बदल जाता है। वह समस्याओं से उलझने के बजाय समाधान खोजने लगता है, और वह परिस्थितियों का शिकार बनने के बजाय अपने भविष्य का निर्माता बन जाता है, और यही परिवर्तन एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं, और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता हम बता दें।
0: बिल्कुल साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001, और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdara.org।
0: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
1: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश 11 से 1 बजे तक चलता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने पसंदीदा गीतों को सुन सकते हैं वाग रेडियो 90.8 FM पर। श्रोता साथियों, 11 बज चुकी है, कार्यक्रमों की फरमाइशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहली फरमाइश हमारे पास आई है, फिल्म का नाम है अजनबी, गीत की बोल है, मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है। सुनना चाह रहे इस गीत को रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशराज सिंधे, ऋषि सिंधे, कृष्णा खोड़के पसंद किया है इस गीत को। श्रीमती सुशीला बाई गगनोजी, दीपक दादा गगनोजे, सौभाग्यवती कमल गगनोजे और भी दोस्त हैं श्रोताओं जो इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। पसंद किया इस गीत को जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन, प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी। यह है लाहौडटा जिला बागपत से। करावल नगर दहली से हैं रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी और भी दोस्त हैं जो इस गीत के साथ जुड़ रहे हैं श्रोताओं। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोड़ाने, अर्चना ताई गोड़ाने, हीरामन छेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा गोड़ाने, यशराज सिंधे, प्रशांत सिंधे, ऋषि सिंधे, कृष्णा घुड़के, रोहिदा चौक पंडरपुर शहर से हैं ये। अनुरोध करता है इस गीत की कस्बा अग्रवाल मंडी टटेरी बागपत से आसिफ अली खान, मोमिन नाज, मुस्कान आसिफ, सादिक अली खान, सारिक अली खान। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। गीत के बोल हैं, मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमारे पास आई है, फिल्म का नाम है CID, गीत की बोल है, लेके पहला पहला प्यार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, सुनना चाह रहे इस गीत को कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मौरा जंगेल, अनिल कुमार जंगेल, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदनी जंगेल, धमदाग्राम सुकरी कला से है अमित, शकुनी, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि। इसी गीत के साथ श्रोता साथियों, हमारे और भी श्रोता है जो जुड़ रहे हैं, रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से है उदयबान पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और सारे परिवार के सदस्य। ग्राम बहरामपुर टीमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन वर्मा, मास्टर समर राज आर्यन, बीबी आरोही ऐशिका, अंजलि श्वेता वर्मा, शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं इस गीत को, गीत के बोल हैं, लेके पहला पहला प्यार।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमारे पास आई है। फिल्म का नाम है कलाकार, गीत के बोल हैं नीले नीले अंबर पर। आवाज दे इस गीत को किशोर कुमार साहब ने। सुनना चाह रहे इस गीत को पद्मा टॉकीज निपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं, कश्मीर से हैं मिर्जाउद्दीन, मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। इसी गीत को पसंद किया है श्रोता साथियों सुरेंद्र, अनीता, रोहित, रितेश, शिखा, प्रीतेश, ये हैं कलाम रोड हरगोविंद नगर नारायणसर से। इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं मारहरा दरवाजा ईटा से हैं नबी हसन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, नवीद हसन अब्बासी, रसदीत वारसी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी और यशब अब्बासी। मुगलपुरा बागपत से हैं अब्दुल सत्तार अब्बासी। ग्राम पजोनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंसोलिया। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। गीत के बोल हैं नीले नीले अंबर पर।

साथियों, अगली फरमाइश हमारे पास आई है। फिल्म का नाम है पाकीजा, गीत की बोल है। आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे। सुना जा रहे इस गीत को MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना एपी पप्पी, किरण खुराना, लव्या आरव खुराना एसके पप्पी इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। ग्राम पंचायत बठीना पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से है। बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति प्रहलाद वर्मा, मुरली अमित वर्मा। पसंद किया इस गीत को मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलूर जिला रतलाम MP से जगदीश धाकर, नाइमा श्रीमती रंजूबाई धाकर, युवराज सिंह धाकर, शिवांगी धाकर। गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से है। मनोज नामदेव, मयंक नामदेव, खुशबू नामदेव, मासूम नामदेव, ममता नामदेव, रेखा नामदेव। बोरखेड़ा पितरामल से विनोद मुन्नत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुन्नत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मुन्नत। तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवत शिवाजी, श्रीमती करुणा शिवाजी, आयुष शिवाजी, विवेक शिवाजी, बीबी आयुषी शिवाजी। ग्राम कोरबी बेलतरा छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित, सोमू, मानस राज। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इस गीत को। गीत के बोल हैं, आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे।

साथियों अगली फरमाइश आई है हमारे पास, गीत के बोल हैं, ले तो आए हो हमें सपनों के गांव में, फिल्म का नाम है दुल्हन वही जो पिया मन भाए। सुना जा रहा है इस गीत को बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान डुगो। सुना जा रहा है इस गीत को गाजियाबाद से शिशपाल अकेला। अनुरोध किया इस गीत के लिए दादरी गेट भिवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा। ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से है रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजूर, रंजना, बद वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। जोन रोजी पर्ल विलीज जनकपुरी सरहानपुर से हैं। ये फरमाइशों का सिलसिला चल रहा है, इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। मुंगी पैठन महाराष्ट्र से बाबा साहिब कंगनकर, साखरपाई परमेश्वरी रोहिणी कंगनकर परिवार के सारे सदस्य। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, यह आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को, गीत के बोल हैं साजन।

साथियों अगली फरमाइश हमारे पास आई है, गीत के बोल हैं, ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। फिल्म का नाम है धनवान। सुना जा रहा है इस गीत को भोपाल का राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान चिंपा, पूजा परिहार सिदर बाजार गुरावली से हैं, अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा अनुरोध करता है दोस्तों इस गीत के। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवानकर, निर्मला नवानकर, विशाल नानकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मोटेकर, धानोरी विटाली से है भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल, सचिन पाटिल, नांदुरा रोड जलगांव जामोद जिला बुल्ढाना महाराष्ट्र से संतोष काटे, उषा काटे, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीपा और वसीम अंसारी, बक्सर बिहार से शरफीउद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अक्रम अंसारी और अल्ताफ अंसारी, सारिमपुर बक्सर से हैं राज एस डी अंसारी, आजमा खातून अंसारी, आफ्ताब अंसारी, महताब अंसारी, मीराज अंसारी, कुल्लू और मल्लू अंसारी। पसंद किया है इस गीत को उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से हैं ये। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं इस गीत को। गीत के बोल हैं, ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमारे पास आई है। फिल्म का नाम है जानवर, गीत की बोल है, मौसम की तरह तुम बदल तो नहीं जाओगे। सुना जा रहा है इस गीत को ग्राम लसुड़िया, पता तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से हैं गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परिकृति का रमेश चंद्र डांगी। अनुरोध किया है इस गीत को ग्राम नगर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्य साहू और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। एकता कॉलोनी रोहतक से हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकिता कांगड़ा। राइडगांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से श्याम गीटी, वंदना गीटी, कार्तिक गीटी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। गीत के बोल हैं, मौसम की तरह तुम बदल तो न जाओगे।

श्रोताओं, अभी बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। गीत के बोल थे, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना चाहोगे। अगली फरमाइश हमारे पास आई है, फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी। गीत की बोल है, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। आवाज दे इस गीत को उदित नारायण साहब ने पसंद किया। इस गीत को दतरंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा मोहाली पंजाब से, बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा खेल बाजार पानीपत से, नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्म मल्होत्रा, लाडू कोयल मल्होत्रा, पापाजी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविका सिक्का, बीरशहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मैत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टोल, पीबी कुलथे, बिहारी कॉलोनी दहली से तुलसी मस्किन, मीणा मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव रिधान खुराना। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इस गीत को। गीत के बोल है, आए हो मेरी जिंदगी में।

साथियों, अभी हमने सुना राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गीत था, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। अगली फरमाइश हमारे पास आई है, गीत के बोल हैं, तेरे दिल में जला सी जगह। सुना जा रहे इस गीत को राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा, नई बस्तीगंज डुडवारा से मोहम्मद यासिन हाशमी, नासा बैगम हाशमी, मोहम्मद तौशिफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी, जयराज प्लोट राजकोट से है, मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को, गीत के बोल है, तेरे दिल में जरा सी जगह अगर मिले।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमारे पास आई है। फिल्म का नाम है प्रेम रोग, गीत की बोल है, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। आवाज दे इस गीत को लता मंगेशकर जी ने और सुरेश वाड़कर जी ने। सुना जा रहा है इस गीत को मित्रनगर बिरशहर महाराष्ट्र से विकास बंसुरे, रेखा बंसुरे, अदिति बंसुरे, वैभव शिंदे, हिल स्टेशन खंडाला से आकाश सरोदे, प्रिया सरोदे। इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं भाई प्रेम सिंह वड़वाल, सुखवीर काजल वड़वाल, लखवीर वड़वाल, रानू कृष्णा, श्रीमती छिंदू, प्रवीण शीतल, नवीन रंगीला, निशान अनमोल, प्यारे बेटे चटकू मटकू। यह है दीवाना रेडियो श्रोता क्लब बहलोल नगर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से। पसंद किया इस गीत को अकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिए, के संजय डाबेरा। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। गीत के बोल हैं, भंवरे ने खिलाया फूल को ले गया राजकुमार।

दोस्तों, जैसा कि कार्यक्रम का सिलसिला बना हुआ था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन पा रहे थे प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट के साथ में, अब आप इसे सुन पाएंगे मेरे साथ में, यानी कि आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। साथियों, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है कलानोर से। फिल्म का नाम है हम हैं राहें प्यार के। गीत के बोल हैं घूंघट की आड़ से। इस गीत को आवाज दी है सोनू कुमार जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन शर्मा, मयंक जी शर्मा। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं गंजडवारा से, मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासिन हाशमी, शमशुल कमर राही जी। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं पलारी छत्तीसगढ़ से, नीतीश कुमार, दुर्गा प्रसाद, पराग जी, अनुजा और ईशान जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रही हैं कुंभार गली कोलगांव से, पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग जी कुंभार। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से, राजू मिलगानी, बबीता मिलगानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रही हैं नवाशहर पंजाब से, गंगादीप थांदी, दीप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका, वानी जी थांदी। आइए दोस्तों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं घूंघट की आड़ से। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है चूरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से। फिल्म का नाम है सौदागर। गीत के बोल हैं हर हंसी चीज का में। इस गीत को आवाज दी है किशोर कुमार जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानुषानु, बब्बन मीनू, काना हरिप्रिया जी ठाकुर। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं दुलापुर उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजरार, नरगिस जी खातून। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं पटियाकला दुर्ग से संजय शाहू, शशांक शाहू, सीमा साहू, सुजिता जी शाहू। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से सुधाकर राज यादव, प्रशांत राजी यादव, सचिन वायाल, प्रथमेश देशमुख, सर्वत देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, कल्पना जी देशमुख। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं अमरावती से सिद्धार्थ गुड़ानी, अर्चना ताई गुड़ानी, हीरामन शेंडी, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा जी गुड़ानी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं हर चीजी हर हसीन चीज का में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

दोस्तों, अभी हमने सौदागर फिल्म का बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोलते ही हर हसीन चीज का मैं तलबदार हूँ, इस गीत को आवाज दी है किशोर कुमार जी ने। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है सरगांव छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है दो रास्ते, गीत के बोल हैं बिंदिया चमकेगी। इस गीत की फरमाइश करता है दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा, शिवांश जी वर्मा। वासिम महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे हैं मास्टर विठल सुरेशी, सुषमा सुरोशी, परिधि सुरोशी, मायराजी सुरोशी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाच पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोहिनी, मोहिन ऋतिक, बलवीर सिंह जी। इसी बीच जुड़ना चाह रही गंजरद्वारा से शमशुल कमर, राही, साहिन फातिमा, अजनान खान, फिजाद खान, अनु खान, उस्माद अंसारी, कलीम जी अंसारी। पत्रोड़ से जुड़ना चाह रही विजय अंबेडकर, सुनीता अंबेडकर, अक्षय अंबेडकर, राधिका अंबेडकर, ऋषिकेश जी अंबेडकर। इसी बीच जुड़ना चाह रही नेहरू चौक पेठन से डॉक्टर सुरेश यादव, अनिता जाधव, आरती पूजा, प्रशांत जाधव, सोनम जाधव, बेबी सिया जाधव। जलाना शहर से जुड़ रहे हैं सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकता जाधव और संगीता जी जाधव। आइए दोस्तों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही बिंदिया चमकेगी। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है अवरपुर से। फिल्म का नाम है चांदनी, गीत के बोल हैं पर्वत से काली घटा। इस गीत की फरमाइश करता है शेख हबीब, छोटू भाई शेख, साजन शेख, फेजाज शेख, फारूक शेख, वसीम जी शेख, अफसाना शेख, अश्मीरा जी, इरफान शेख, जनीत शेख, फरहान शेख, अब्दुल्लोही वाला और शाहिदा जी शेख। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं बरका काना से अफ्ताब ताज, साहिन सुल्तान, सोनू तस्नीम, कमल कुमार, अफ्ताब मलिक जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साहिना नवाज, हसन नवाज, बेबू अहमद, मिफ्रा नवाज, बीबी चाहत जी। इस गीत के अनुरोध करता है बुलंद शहर से मोहम्मद सहीद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फुरुद्दीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अभांजी अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य।

आइए दोस्तों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जमशेदपुर से। फिल्म का नाम है जनता की अदालत, गीत के बोल हैं दिल की हालत। इस गीत को आवाज़ दी है किशोर कुमार सोनू और कविता कृष्णामूर्ति जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है हरमिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी जी भाटिया। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया।

शिष्या ने और निमित आहूजा जी। इसी बीच जुन्ना चारे लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ जी मरावी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुन्ना चारे हैं, करेली से मोहम्मद याशीम अंसारी, नरसी अंसारी, शमा अंसारी, शशिम अंसारी, माहिनूर जी। उत्तर प्रदेश से जुन्ना चारे मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान नाज, नवाजिक शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी, राधा नामदेव जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुन्ना चारे अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जय प्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं दिल की हालत।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है हनुमानगढ़ राजस्थान से। फिल्म का नाम है हमारे तुम्हारे, गीत के बोल हैं अच्छा चलो बाबा माफ कर दो। इस गीत को आवाज दी है किशोर कुमार और उषा जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, सतीश और योगेश जी कड़वासरा। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं बिहार कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव खुराना, रिधांजी खुराना। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जनदीदस कौर, गुरप्रीत, लवप्रीत जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं मॉडल ट्यून कलनर से सुधीर न्यूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापत, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा, सुहानी शर्मा, पंकज शर्मा, रोहित शर्मा, रेशमा शर्मा, सुनीता शर्मा, सुनीता जैन, सुनीता गहलोत, हरिपाल जी। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडी खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही अच्छा चलो जी बाबा माफ कर दो। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है धनुरी तेलीवाला से। फिल्म का नाम है धड़कन, गीत के बोल हैं अक्सर इस दुनिया में। इस गीत की फरमाइश करता है निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश से दीपक शाक्य, ज्योति शाक्य, सक्षम जी शाक्य। मुरादाबाद से जुड़ना चाह रहे हैं अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य जी कसाना। मलियाना सरधाना मेरठ से जुड़ रही हैं अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जी, वी एम जी जैन। इसी बीच जुड़ना चाह रहे कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दली, सविता दली, अनिकेत दली, रोहिणी दली, ऋषिकेश दली, जीविका दली, सानिका जी दली। पुनावली पुणे से जुड़ना चाह रही हैं अजय सोनोनी, करिश्मा सोनोनी, अविका सोनोनी, विशाखा सोनवनी जी। डाबकी रोड अकोला से जुड़ रही हैं शशिला मधुरकर, सदानंद मधुरकर, कुमार गौरव जी मधुरकर। इसी बीच जुड़ना चाह रहे श्रीरामपुर से डी अशोक कुमार, रविका जीविका, सोनू कुम्भार, अर्चना कुम्भार। पुनावली से जुड़ना चाह रहे हैं अजय सोनोनी, करिश्मा सोनोनी, अविका सोनोनी, शाइशा जी सोनवनी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही अक्सर इस दुनिया में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है आज और कल, गीत के बोल हैं ये वादियां ये फिजाएं। इस गीत को आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है चन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजु योगिता श्रीवास, रंजन शाहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं गंजडवारा गणेशपुर से फिरासत हुसैन, अलकमर जहां, सिफा सिमरन, मोहम्मद अलफेज, फिजा शेख जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आरुषि श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, बीबी आरुषि श्रीवास,

छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रही मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित राज, मोनू मानस जी राज। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं ये वादियां ये फिजाएं। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पटेल नगर मालोट से। फिल्म का नाम है वंश। गीत की बोल है, आंखें तेरी बाहों में हर शाम लगी सिंदूरी। इस गीत को आवाज दी है लता जी ने। इस गीत की फरमाइश करता है रमेश कुमार झाझोरिया, गीता रानी झाझोरिया, गंदीप झंझोरिया, आरजू झंझोरिया और गुड्डू जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। पंडितपुर शहर से जाकिर मुलानी, समया मुलानी, सुभान मुलानी, समीर मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज मुलानी, दिलशाद मुलानी, नसीर मुलानी, बाबा बी मुलानी, बादशाह जी मुलानी और मुलानी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसी बीच जुड़ना चाह रहे बोरखेड़ा पित्रामल से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंग मुणत, चेतन नाइटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुशजी मुणत और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। शिवाजीनगर से राजेश खोबरखेड़ी, शिवसागर खोबरखेड़ी, इंद्राताई खोबरखेड़ी और शंकुताई खोबरखेड़ी। बुल्ढाणा से जुड़ रहे हैं दीपाली रामधाड़ी, स्वराजी रामधाड़ी। अमरावती से जुड़ना चाह रहे हैं सुनैना पवन भोड़े। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से रुपेश संगई, महेश संगई, ब्रजेश संगई, प्रतीश संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, आके तेरी भावों में हर शाम लगी सिंदूरी। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। और साथियों यह गीत आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

तो साथियों, ये थी हमारी आज की सभा, जो कि अब यही समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज के सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।

तो श्रोता साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्य आप अपने बांसवाचार। तो साथियों, ये अपने साथी मनीषा पटेल को इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

शुभ संध्या श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज, और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। साथियों, लेकर हाजिर हो चुकी हूं आज के इस शाम के सुहाने पल में हमारे आज के खास कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, दिन भर की भागदौड़ और जिम्मेदारी के बाद जब शाम ढलती है तो मन चाहता है कि थोड़ा सुकून, थोड़ा ज्ञान और थोड़ा मनोरंजन हो जाए, और इन सभी रंगों को लेकर आपके साथ है आपका अपना वागड़ रेडियो। तो साथियों, आइए जानते हैं आज की शाम के कार्यक्रमों के बारे में। सबसे पहले शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम आराधना, भक्ति और आस्था से भरे सुरों को लेकर, जो मन को शांति देते हैं और आत्मा को सुकून। दिन भर की थकान को भुलाकर साथियों, ईश्वर के स्मरण के साथ इस खूबसूरत शाम की शुरुआत कीजिए। इसके बाद शाम 5:30 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। यह मंच है युवाओं के विचारों का, उनके सपनों का और उनके जज्बे का। साथियों, इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी आपकी अपनी रेडियो साथी कशिश पाराशर यानी कि मैं और जागृति भट्ट। आगे बढ़ते हुए इसे शाम 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन, जो मासूमियत, मुस्कान और सपनों से भरा होता है। साथियों, इस कार्यक्रम में होंगी बचपन की कुछ सीखे, मीठी यादें। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर यानी कि मैं। इसके बाद दोस्तों, शाम 6:30 पर हम सुनेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए समर्पित कार्यक्रम है। इसमें आप जानेंगे खेती से जुड़ी तकनीक, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की उपयोगी सलाह के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और उनके साथ होंगे जागृति भट्ट। इसके आगे दोस्तों, शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। साथियों, ये कार्यक्रम हमें हमारे समाज, देश और सच्चाई से जुड़ी उन बातों से रूबरू करवाता है, जो हमें जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। तो भूलिएगा नहीं, शाम 7 बजे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। इसी के बाद दोस्तों, हम फिर से रुक करेंगे 7:30 पर हमारे अगले एक खास और रंगों से भरे कार्यक्रम घूमर की ओर, क्योंकि साथियों, राजस्थान की संस्कृति में घूमर केवल एक लोक नृत्य नहीं, बल्कि नारी की खुशी, सम्मान और परंपरा का सुंदर प्रतीक है। इसी परंपरा और नारी शक्ति को समर्पित है हमारा ये विशेष कार्यक्रम घूमर, जहां महिलाओं से जुड़ी बातें, उनकी प्रतिभा, अनुभव और जीवन की प्रेरणादायक बातें आप तक पहुंचाई जाती है। तो जैसा कि साथियों, कार्यक्रम की रूपरेखा तो हम जान ही रहे हैं, इसी के बाद दोस्तों शुरू होगा हमारा विशेष प्रेरणादायक कार्यक्रम सपनों की उड़ान, जिसमें आप जानेंगे साथियों नए नए प्रेरणादायक विषयों के बारे में और हमारी सपनों की उड़ान के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी और इसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे, और इसके बाद रात 9 बजे प्रस्तुत है हमारा खास कार्यक्रम शामे गजल, जहां गूंजेंगे दिल को छू लेने वाले अल्फाज, मधुर गजलें और सुकून भरे नगमे, जो इस सुहानी रात को और भी खास बना देंगे। तो साथियों, शाम की ये घड़िया सिर्फ समय नहीं होती, बल्कि भावनाओं का एक खूबसूरत सफर होती है, जहां भक्ति का सुकून भी है, युवाओं के सपने भी हैं और बचपन की हंसी भी है, साथ ही किसान की मेहनत भी है और संगीत का वो जादू भी है जो आपके दिल को छू जाएगा। यही है हमारी शाम और यही है हमारा वागड़ रेडियो। तो आइए साथियों, अब शुरुआत करते हैं आज के पहले कार्यक्रम आराधना से। आप सुनते रहिए वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: जब किसी व्यक्ति को किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है तो वो घटना उसके अंतर को झकझोर देती है। समस्त जगत उसे अपना शत्रु प्रतीत होता है। अन्याय लगने वाली घटना जितनी बड़ी होती है मनुष्य का हृदय भी उतना ही अधिक विरोध करता है। उस घटना के उत्तर में वो न्याय मांगता है और ये योग्य भी है। वास्तव में समाज में किसी भी प्रकार का अन्याय व्यक्ति की आस्था और विश्वास का नाश है। किंतु ये न्याय क्या है, न्याय का अर्थ क्या है? अन्याय करने वाले को अपने कार्य पर पश्चाताप हो और अन्याय भुगतने वाले के मन में फिर से विश्वास जगे समाज के प्रति, इतना ही अर्थ है ना न्याय का। किंतु जिसके हृदय में धर्म नहीं होता वो न्याय को छोड़कर बैर और प्रतिशोध को अपनाता है, हिंसा के बदले प्रतिहिंसा की भावना लेकर चलता है। स्वयं भोगे हुई पीड़ा से कहीं अधिक पीड़ा देने का प्रयत्न करता है और इस मार्ग पर चलते अन्याय को भुगतने वाला स्वयं अन्याय करने लगता है। शीघ्र ही वो अपराधी बन जाता है। अर्थात न्याय और प्रतिशोध के बीच बहुत कम अंतर होता है और इसी अंतर का नाम है धर्म। क्या ये सत्य नहीं? स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा,

0: कोबी तरबूज आंवला टमाटर नु सेवन करवो सुवे
1: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो अनीमिया थकी बची सकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। सेहत नु राज हूं है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात की शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात्काली ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर एक कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है कि छोटे छोटे ब्रेक से दिमाग को रिसेट कैसे करें। जैसा कि कशिश, मनुष्य का जीवन आज पहले की तुलना में कहीं अधिक व्यस्त हो गया है।
0: बिल्कुल,
1: सुबह से लेकर रात तक हम काम, पढ़ाई, जिम्मेदारियां और तकनीक से जुड़े रहते हैं।
0: जी हाँ,
1: मोबाइल की स्क्रीन, कंप्यूटर का काम, पढ़ाई का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां और भविष्य की चिंताएं हमारे दिमाग को लगातार सक्रिय रखती है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में अक्सर हम महसूस करते हैं कि हमारा मन थक गया है, ध्यान भटकने लगा है और काम में पहले जैसी ऊर्जा नहीं बची है।
0: जी बिल्कुल।
1: इसका कारण केवल शारीरिक थकान नहीं है श्रोताओं, बल्कि मानसिक थकान भी होती है। मानसिक थकान को दूर करने का एक सरल और प्रभावी उपाय है छोटे छोटे ब्रेक लेना। ये छोटे विराम हमारे दिमाग को रिसेट करने का काम करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमें फिर से नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए तैयार करते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम में इसी विषय को लेकर हम हमारे युवा साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जैसा कि दोस्तों गीत संगीत के साथ मनोरंजन करना भी जरूरी है, तो पहले मनोरंजन करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ, तो आइए साथी सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय तो बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात करने वाले हैं छोटे छोटे ब्रेक से दिमाग को हम रीसेट कैसे कर सकते हैं। जैसा कि जागृति जी, हम सभी देखते हैं कि आज के युवा साथी जीवन की तेज रफ्तार, प्रतिस्पर्धा और लगातार बढ़ती जिम्मेदारियों से भरे हुए हैं।
1: बिल्कुल
0: साथियों, पढ़ाई, करियर, सोशल मीडिया, परिवार की अपेक्षाएं और भविष्य की चिंताएं, इन सबके बीच हम युवा अक्सर बिना रुके आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहते हैं।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि जागृति जी, हमारे युवा साथियों को ऐसा लगता है कि लगातार काम करते रहना ही सफलता की कुंजी है। लेकिन यहाँ पर हम उन्हें बताना चाहेंगे कि सच्चाई ये है कि मनुष्य कोई मशीन नहीं है। शरीर की तरह दिमाग को भी आराम, संतुलन और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अक्सर देखा जाता है कि हमारे युवा साथी घंटों तक पढ़ाई करते हैं,
1: बिल्कुल
0: कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, या फिर किसी लक्ष्य को पाने के लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं।
1: जी हाँ,
0: देखते हैं कि शुरुआत में तो ये उन्हें काफी अच्छा लगता है, लेकिन कुछ समय बाद वे चिड़चिड़ापन, ध्यान की कमी जैसी समस्याएं उनके सामने आने लगती है।
1: जी हाँ,
0: ऐसे समय में दोस्तों बड़े अवकाश की नहीं, छोटे छोटे ब्रेक की हमें जरूरत होती है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि दिमाग भी हमारे शरीर के किसी अन्य अंग की तरह लगातार काम करते करते थक जाता है। यदि हम बिना रुके लंबे समय तक किसी कार्य में लगे रहते हैं तो हमारी एकाग्रता कम होने लगती है।
0: बिल्कुल,
1: हम गलतियां करने लगते हैं और काम की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। ऐसे समय में कुछ मिनट का छोटा सा ब्रेक हमारे मस्तिष्क को आराम देता है।
0: बिल्कुल,
1: ये आराम दिमाग को पुनः सक्रिय करने और नई सोच के लिए तैयार करने का अवसर देता है।
0: जी हाँ,
1: इसलिए कहा भी गया है कि थोड़ा रुकना हार नहीं बल्कि नई शुरुआत की तैयारी है।
0: बिल्कुल,
1: छोटे ब्रेक का अर्थ ये नहीं है दोस्तों कि घंटों तक काम छोड़ दिया जाए। इसका अर्थ ये है कि काम के बीच कुछ मिनट अपने मन और शरीर को आराम दिया जाए।
0: बिल्कुल,
1: उदाहरण के तौर पर कशिश, हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं तो यदि कोई बच्चा लगातार एक घंटे से पढ़ाई कर रहा है तो वो 5 या 10 मिनट का ब्रेक लेकर टहल सकता है।
0: जी जी,
1: पानी पी सकता है, खिड़की से बाहर का दृश्य देख सकता है। इससे उसका दिमाग ताजा हो जाएगा और वो पहले से बेहतर तरीके से पढ़ाई कर पाएगा।
0: बिल्कुल,
1: वैज्ञानिक शोध भी यही बताते हैं कशिश की, लगातार काम करने की तुलना में बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेने वाले लोग अधिक उत्पादक होते हैं। जब हम बिना रुके काम करते हैं श्रोताओं, तो हमारा मस्तिष्क जानकारी को सही तरीके से संसाधित नहीं कर पाता।
0: बिल्कुल,
1: वहीं कुछ मिनट का विराम उसे मिली हुई जानकारी को व्यवस्थित करने का अवसर देता है।
0: जी हाँ,
1: यही कारण है कि कई बार किसी कठिन समस्या का समाधान हमें तब मिलता है जब हम थोड़ी देर के लिए उस समस्या से दूर हो जाते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, दोस्तों जो छोटे छोटे ब्रेक होते हैं वो दिमाग के लिए रीसेट बटन की तरह काम करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि जागृति जी, मोबाइल फोन को कभी कभी रिस्टार्ट करने से उसकी गति बेहतर हो जाती है, ठीक वैसे ही कुछ मिनटों का विश्राम श्रोता साथियों हमारे मस्तिष्क को नई ऊर्जा और ताजगी से भर सकता है।
1: बिल्कुल,
0: देख सकते हैं कि ये केवल आराम करने का तरीका नहीं है बल्कि बेहतर प्रदर्शन और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने की एक वैज्ञानिक आवश्यकता भी है। देखते हैं जागृति जी कि कई युवा साथी ऐसा सोचते हैं कि अगर वे बिना रुके लंबे समय तक काम करेंगे तो उन्हें सफलता जल्दी मिलेगी।
1: जी हाँ,
0: लेकिन दोस्तों लगातार काम करने से दिमाग पर दबाव बढ़ जाता है। शुरुआत में तो ये दबाव आपको ज्यादा महसूस नहीं होगा, लेकिन जब ये धीरे धीरे अपना असर दिखाता है तो हमारे लिए ढेर सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं।
1: बिल्कुल,
0: देखते हैं कि जब हमारे युवा साथी लगातार काम करते हैं तो उनकी एकाग्रता कमजोर होने लगती है। वे छोटी छोटी बातें भूलने लगते हैं जागृति जी, निर्णय लेने की क्षमता उनकी प्रभावित होती है, रचनात्मकता कम हो जाती है और जो उनका मन है वो भी उस कार्य से जल्दी उबने लगता है।
1: बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कशिश कि अगर हम छोटा छोटा ब्रेक लेंगे तो हो सकता है कि हमारे कार्य बाधित नहीं होंगे।
0: बिल्कुल,
1: तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है कि छोटे छोटे ब्रेक से दिमाग को रिसेट कर सकते हैं, तो ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी हमारे आज के इस कार्यक्रम में। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ जागृति जी,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, और हमारी बातें चल रही थी कि छोटे छोटे ब्रेक से दिमाग को रिसेट कैसे करें।
1: बिल्कुल,
0: तो जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत सारी बातें की थी, यही अगर आपसे फिर से इस बारे में बात करें तो श्रोताओं, ब्रेक लेना उपयोगी है लेकिन उसका सही उपयोग करना भी बहुत जरूरी है। यदि ब्रेक के दौरान हम फिर से मोबाइल पर सोशल मीडिया देखने लगेंगे तो दिमाग को वास्तविक आराम नहीं मिल पाएगा।
1: बिल्कुल,
0: बेहतर होगा कि ब्रेक के समय हम कुछ ऐसा करें जो मन को शांति दे, जैसे कि गहरी सांस लेना, हल्का व्यायाम करना, संगीत सुनना, पौधों को देखना या कुछ मिनट तक शांत बैठना।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कशिश की प्रकृति के साथ बिताए गए छोटे छोटे पल भी दिमाग को रिसेट करने का सबसे अच्छा तरीका होते हैं। पेड़ों की हरियाली, पक्षियों की आवाज, खुली हवा हमारे मन को नई ऊर्जा देती है, और यही कारण है कि कई विशेषज्ञ काम के बीच थोड़ी देर बाहर निकलने और प्रकृति के संपर्क में रहने की सलाह देते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि ये जो छोटे छोटे ब्रेक होते हैं वो कई स्तरों पर लाभ भी पहुंचाते हैं। जैसे कि जब हम लगातार किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं साथियों, तो इसमें काफी मानसिक ऊर्जा खर्च होती रहती है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में कुछ मिनट का ब्रेक इस ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने में सहायता करेगा। और जागृति जी, कई शोधों में भी ऐसा पाया गया है कि नियमित अंतराल पर लिए गए छोटे ब्रेक लोगों की एकाग्रता बनाए रखने में मदद करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और ब्रेक के बाद व्यक्ति अधिक फोकस के साथ फिर से काम शुरू कर पाता है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि कुछ मिनटों की राहत तनाव हार्मोन के स्तर को कम करने में मदद करती है। इससे आपका मन भी शांत रहता है और आप काम का दबाव भी कम महसूस करते हैं।
0: जी हाँ, कहते हैं कशिश के जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। निरंतर काम करना ही सफलता का एकमात्र रास्ता नहीं है श्रोताओं, सफलता के लिए ऊर्जा, एकाग्रता और मानसिक स्वास्थ्य भी उतने ही जरूरी है।
1: जी जी,
0: यदि हम अपने दिमाग को समय समय पर आराम नहीं देंगे तो धीरे धीरे हमारी कार्य क्षमता घटने लगेगी। इसीलिए छोटे छोटे ब्रेक लेना समय की बर्बादी नहीं बल्कि समय का बुद्धिमानी से किया गया निवेश है।
1: बिल्कुल,
0: हमें अपने दैनिक जीवन में ऐसे छोटे विरामों को शामिल करने होंगे श्रोताओं, जैसे कि चाहे हम विद्यार्थी हो, कर्मचारी हो, किसान हो, गृहिणी हो या व्यवसायी, हर व्यक्ति को मानसिक ताजगी की आवश्यकता होती है कशिश। कुछ मिनट का विश्राम हमें फिर से ऊर्जावान बनाता है श्रोताओं, और बेहतर निर्णय लेने में सहायता करता है।
1: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ अगर बात करें तो प्रकृति का मन और मस्तिष्क पर अद्भुत प्रभाव पड़ता है। ऐसा हम देखते हैं दोस्तों, ब्रेक के दौरान कुछ मिनट खुले आसमान, पेड़ों, पक्षियों या फिर हरियाली के बीच अगर हम बिताएं तो हमें मानसिक ताजगी मिल सकती है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि प्रकृति हमें ये याद दिलाती है जागृति जी कि जीवन केवल लक्ष्य और उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, उसमें संतुलन, शांति और सौंदर्य भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। देखते हैं कि जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी सांसें काफी तेज और उथली हुई हो जाती हैं।
0: जी हाँ,
1: वहीं गहरी और धीमी सांसें शरीर को ये संकेत देती है कि सब कुछ सुरक्षित है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप ब्रेक लेते हैं तो ब्रेक के दौरान आपको आराम से बैठना है, धीरे धीरे गहरी सांस लेनी है, कुछ क्षण रुकना है और धीरे धीरे उस सांस को छोड़ना है।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, केवल कुछ मिनटों का ये अभ्यास आपके मन को काफी हद तक शांत कर सकता है और आपको तनाव से भी दूर रखेगा।
0: जी
1: हम कह सकते हैं कि लंबे समय तक बैठे रहने से शरीर कई बार अकड़ भी जाता है। ऐसे में ब्रेक के दौरान थोड़ा सा चलना, स्ट्रेचिंग करना या सीढ़ियां चढ़ना उतरना हमारे शरीर में रक्त संचार को बढ़ाएगा जागृति जी।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि हम देखते हैं कि छोटे छोटे ब्रेक हमारे दिमाग के लिए उसी प्रकार आवश्यक है जैसे शरीर के लिए भोजन और पानी। वे मानसिक थकान को दूर करते हैं, एकाग्रता बढ़ाते हैं, तनाव कम करते हैं और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करते हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, जीवन की भाग दौड़ में यदि हम कुछ पल स्वयं के लिए निकाल सके तो हमारा मन अधिक शांत, स्वस्थ, उत्पादक बन सकता है। याद रखिए, मशीनों को भी समय समय पर रिस्टार्ट करना पड़ता है।
1: जी जी।
0: फिर हमारा दिमाग तो उससे कहीं अधिक जटिल और अनमोल है श्रोताओं, इसलिए जब भी थकान महसूस हो आपको, कुछ पल रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए, मुस्कुराइए और अपने मन को नया आरंभ करने का अवसर दीजिए।
1: बिल्कुल,
0: हो सकता है कि वही छोटा सा ब्रेक हमें नई ऊर्जा, नया विचार और नई सफलता की दिशा दे दे। क्योंकि कहा गया है कि काम बहुत जरूरी है लेकिन आराम भी उतना ही जरूरी है। छोटे छोटे ब्रेक ही बड़े सपनों की ऊर्जा बनते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ दोस्तों आपसे कहें तो कभी कभी कुछ मिनट की सकारात्मक बातचीत भी हमारे दिमाग को रिफ्रेश कर देती है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि किसी प्रिय व्यक्ति से हंसते हुए बात करना जागृति जी हमारे तनाव को कम करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। क्योंकि मानवीय संबंध मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाते हैं, साथ ही भावनात्मक संतुलन भी बनाकर रखते हैं। दोस्तों, कहा जा सकता है कि जीवन में सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि समझदारी से की गई मेहनत से मिलती है। यदि व्यक्ति काम और आराम के बीच संतुलन नहीं बनाता है तो उसकी ऊर्जा जल्दी ही समाप्त हो सकती है जागृति जी। हम देखते हैं कि संतुलित जीवन में काम भी होता है, सीखना भी होता है, आराम भी होता है और मनोरंजन भी होता है।
0: बिल्कुल,
1: और यही संतुलन श्रोता साथियों लंबे समय तक सफलता का आधार बनता है।
0: जी हाँ कशिश, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे श्रोता साथियों को यही कहना चाहेंगे कि श्रोताओं छोटा सा ब्रेक बड़ी सोच की शुरुआत, तरोताजा दिमाग ही बनाता है सुनहरा भविष्य।
1: बिल्कुल,
0: इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ आपके साथ आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे, पर जाते जाते सुनवा देते हैं एक और गीत।
1: जी बिल्कुल जागृति जी,

0: साथियों इस गीत के साथ ही विदा लेंगे, पर अंत में आपसे कुछ कहना चाहेंगे कि जब भी आपको लगे कि मन थक गया है, विचार उलझ गए हैं या काम में मन नहीं लग रहा है, तब खुद को दोष मत दीजिए। कुछ पल का विराम लीजिए, गहरी सांस लीजिए, खुली हवा में जाइए और अपने मन को फिर से ऊर्जा से भरने का अवसर दीजिए।
1: बिल्कुल,
0: हो सकता है श्रोता साथियों कि जिस समस्या का समाधान घंटों की मेहनत से न मिला हो, वह कुछ मिनट के शांत ब्रेक के बाद स्वयं स्पष्ट हो जाए।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए काम और आराम के बीच संतुलन बनाएं, अपने मन और मस्तिष्क का सम्मान करें और हर दिन नई ऊर्जा के साथ अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएं। क्योंकि जब दिमाग तरोताजा होता है कशिश, तो सोच बड़ी होती है, निर्णय बेहतर होते हैं और सफलता के रास्ते भी साफ दिखाई देते हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, तो इन्हीं आशाओं के साथ दोस्तों अब हम कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
0: बिल्कुल,
1: तो श्रोता साथियों आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
0: हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज वागर रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान।
1: जी हाँ,
0: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए श्रोता साथियों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर।
1: बिल्कुल,
0: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। नमस्कार।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है समाज में बच्चों की भूमिका को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि बच्चे किसी भी समाज की सबसे महत्वपूर्ण और अनमोल धरोहर होते हैं। वे केवल परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र का भविष्य होते हैं।
0: जी,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि जिस प्रकार एक बीज में एक विशाल वृक्ष बनने की क्षमता होती है, उसी प्रकार बच्चे में एक बेहतर समाज और देश बनाने की शक्ति छिपी होती है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम बच्चों की भूमिका को समझें और उन्हें सही दिशा दें।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: जी हाँ,
0: तो क्यों ना श्रोता साथियों को पहले गीत हम सुनवाएं।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि समाज में बच्चों की क्या भूमिका है।
1: बिल्कुल,
0: अगर समाज की नींव के रूप में बच्चों को देखा जाए साथियों, तो हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो समाज की नींव होते हैं। जिस तरह मजबूत नींव पर ही एक मजबूत इमारत खड़ी होती है अंजलि जी, उसी प्रकार बच्चों के अच्छे संस्कार और शिक्षा से ही एक स्वस्थ और सशक्त समाज का निर्माण होता है।
1: बिल्कुल,
0: अगर बच्चों को बचपन से ही सही शिक्षा, संस्कार, मूल्य दिए जाएं, तो वे बड़े होकर जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं।
1: जी हाँ, यही कशिश अब बात आती है कि शिक्षा और जागरूकता में इनकी क्या भूमिका होती है। तो श्रोता साथियों, आज के बच्चे पहले की तुलना में अधिक जागरूक और समझदार हैं।
0: बिल्कुल,
1: वे नई नई तकनीकों और जानकारियों से जुड़े रहते हैं। कशिश, बच्चे अपने माता पिता और समाज को भी नई चीजें सिखाते हैं। वे स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक कर सकते हैं, और कई बार बच्चे ही घर में बदलाव की शुरुआत करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि हाथ धोना, सफाई रखना, पर्यावरण बचाना, ये सभी। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि बच्चे पर्यावरण की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पेड़ लगाना, उनकी देखभाल करना, पानी और बिजली की बचत करना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, स्वच्छता अभियान में भाग लेना। कशिश, जब बच्चे इन आदतों को अपनाते हैं तो वे अपने परिवार और समाज को भी प्रेरित करते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें सामाजिक मूल्यों के प्रचारक की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और जो सीखते हैं उसे अपनाते भी हैं। साथियों, वे ईमानदारी, सच्चाई, सहयोग और प्रेम जैसे गुणों को फैलाते हैं। वे समाज में साथियों, भाईचारा और एकता को मजबूत करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही बच्चों के व्यवहार से ही समाज की संस्कृति और सभ्यता का पता चलता है अंजलि जी। अगर बात करें परिवार की, तो देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो परिवार और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के तरह काम करते हैं। वे अपने परिवार के संस्कारों को समाज में ले जाते हैं साथियों, और समाज की सीख को परिवार तक लेकर आते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हम इस तरीके से कह सकते हैं कि वे दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं।
1: यही कशिश अब बात आती है बदलाव के वाहक की। तो श्रोता साथियों, आज के बच्चे भविष्य के नेता, शिक्षक, वैज्ञानिक और समाज सेवी हैं।
0: बिल्कुल,
1: वे समाज में नए विचार और नई सोच लेकर आते हैं। वे पुरानी कुरीति और गलत परंपराओं को बदलने की क्षमता भी रखते हैं।
0: जी,
1: वे समाज को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कह सकते हैं कशिश के बच्चों में नैतिक और भावनात्मक विकास समाज के लिए बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: अगर बच्चों को सही और गलत का ज्ञान दिया जाए श्रोता साथियों, तो वे सही निर्णय ले सकते हैं। वे दूसरों के प्रति संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण बनते हैं, जिससे समाज में शांति और सद्भाव बना रहता है।
0: बिल्कुल,
1: आज के समय में कशिश बच्चों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मोबाइल इंटरनेट की लत हो गई, पढ़ाई का दबाव हो गया, सामाजिक असमानता हो गई और गलत संगति। श्रोता साथियों, इन समस्याओं के कारण बच्चों का विकास प्रभावित हो सकता है, इसे समाज और परिवार को मिलकर उनका समाधान करना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: बच्चों की भूमिका को मजबूत बनाने के लिए समाज की जिम्मेदारी है कशिश कि उन्हें अच्छी शिक्षा और सुरक्षित वातावरण देना है, उनके अधिकारों की रक्षा करना है, उन्हें प्रोत्साहित और मार्गदर्शन देना है, और उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत होती है।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा अंजलि जी। तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से बातें हमारे श्रोता साथियों से बहुत अच्छी कर रहे हैं, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अभी क्यों ना हमारे साथियों को हम एक और गीत के साथ मनोरंजन करवाएं।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हम जान रहे थे कि समाज में बच्चों की क्या भूमिका है उसको लेकर, तो श्रोता साथियों, बच्चे किसी भी समाज का भविष्य ही नहीं बल्कि वर्तमान भी है। उनकी छोटी छोटी आदतें और कार्य समाज में बड़ा बदलाव ला सकती है। यदि कशिश हम बच्चों को सही दिशा, शिक्षा और संस्कार देंगे तो वे एक बेहतर और सशक्त समाज का निर्माण करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए बच्चों को केवल सीखने वाला नहीं बल्कि समाज का सक्रिय सदस्य मानना चाहिए। समाज का भविष्य कागज पर लिखी योजनाओं से नहीं बल्कि बच्चों के मन में बोए गए विचारों से तय होता है।
1: बिल्कुल,
0: अगर बच्चों के भीतर अच्छाई, सच्चाई और जिम्मेदारी का बीज बोया जाए कशिश, तो आने वाला समाज अपने आप ही उज्जवल और प्रगतिशील बन जाएगा। इसलिए बच्चों को समझाना और उन्हें सही मार्गदर्शन देना ही समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें तो देखते हैं श्रोता साथियों कि हम सबके लिए समझना जरूरी है कि बच्चे केवल समाज का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की सबसे सशक्त ऊर्जा भी हैं।
0: बिल्कुल,
1: उनके विचार, उनकी जिज्ञासाएं और उनकी मासूम सोच में वह ताकत होती है साथियों जो समाज की दिशा बदल सकते हैं। यदि हम बच्चों को केवल आदेश देने या सीमाओं में बांधने के बजाय उन्हें समझने, सुनने और सही अवसर देने का प्रयास करते हैं अंजलि जी,
0: बिल्कुल,
1: तो वे स्वयं समाज के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। साथियों, एक ऐसा समाज जहां बच्चों को प्यार, सुरक्षा, शिक्षा और स्वतंत्र सोच का वातावरण मिलता है, वह समाज अपने आप ही उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ता है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि बच्चों के भीतर छिपी प्रतिभा, संवेदनशीलता और नवाचार की भावना समाज को नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। अंजलि जी,
0: बिल्कुल, इसी के साथ श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि हमें बच्चों को केवल जिम्मेदारी सिखाने की नहीं बल्कि उन्हें भरोसा देने की आवश्यकता है कि वे महत्वपूर्ण हैं, उनकी सोच मायने रखती है और वे समाज को बेहतर बना सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जब बच्चे आत्मविश्वास और सही मूल्यों के साथ आगे बढ़ते हैं तब समाज में सकारात्मक परिवर्तन अपने आप दिखाई देने लगता है। कहा जा सकता है कशिश कि बच्चों में किया गया हर छोटा निवेश, चाहे वह शिक्षा हो, संस्कार हो या प्रेम हो, वह पूरे समाज के उज्जवल भविष्य की नींव बनता है।
1: बिल्कुल,
0: यही कारण है कि बच्चों की भूमिका को समझना और उन्हें सशक्त बनाना किसी भी समाज की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए।
1: जी हाँ,
0: आज समाज का निर्माण केवल वर्तमान पीढ़ी के प्रयासों से नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के सपनों और सोच से होता है। बच्चे अपने भीतर असीम संभावनाएं लेकर जन्म लेते हैं। यदि उन्हें सही मार्गदर्शन, उचित शिक्षा और सकारात्मक वातावरण मिले तो वे समाज को नई दिशा देने में सक्षम होते हैं। वे नई सोच, नई ऊर्जा और नए विचारों के साथ समाज को आगे बढ़ाते हैं। कह सकते हैं कशिश के आज के बच्चे कल के नेता, वैज्ञानिक, शिक्षक और समाज सुधारक बनेंगे।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए आवश्यक है श्रोता साथियों कि हम उनके अंदर आत्मविश्वास, जिम्मेदारी और नैतिकता के गुणों का विकास करें। जब बच्चे सही मूल्यों के साथ बड़े होते हैं तो वे समाज में समानता, न्याय और शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों को केवल भविष्य की उम्मीद मानकर नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि उन्हें आज से ही समाज के निर्माण में भागीदार बनाना चाहिए। यही सोच एक सशक्त, जागरूक और विकसित समाज की नींव रखती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो इस तरीके से हम कार्यक्रम के माध्यम से कह सकते हैं हमारे साथियों को कि दोस्तों, यदि अगर हम ध्यान से देखें तो समाज की असली तस्वीर बच्चों के व्यवहार में ही झलकती है।
0: बिल्कुल,
1: जिस समाज में बच्चे खुश, सुरक्षित और शिक्षित होते हैं वह समाज स्वयं ही समृद्ध और विकसित होता है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं अंजलि जी कि बच्चों की मुस्कान, उनकी मासूमियत और उनकी सीखने की इच्छा ही समाज की असली पूंजी है। ऐसे में बच्चों को सही दिशा देना, उन्हें अच्छे संस्कार सिखाना और उनके सपनों को उड़ान देना केवल परिवार के ही नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल,
1: जब समाज बच्चों को समझता है और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देता है तब वे अपनी क्षमता के अनुसार समाज को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं।
0: जी जी,
1: इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा साथियों कि बच्चे समाज का आईना होते हैं। जैसा हम उन्हें बनाएंगे वैसा ही हमारा समाज बनेगा।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में बच्चों को सशक्त, शिक्षित और संस्कारी बनाना ही एक उज्जवल और सफल समाज की सबसे बड़ी कुंजी है।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम सच्चा बचपन में हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से बच्चे जो हैं वो हमारे समाज में भूमिका निभा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और किस तरीके से हमें बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करने की जरूरत होती है। तो आशा करते हैं श्रोता साथियों कि सभी बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: जी हाँ,
0: विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल अंजलि जी।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ।
0: तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को।
1: नमस्कार।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भाई ने बोनो, आप इकारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े नी कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश रागे है। होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा, प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा। होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना ना कदम है, ये आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व नी कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थे सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है। होवे भाईन बोनु, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाई ने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।

0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते अनिमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपना ने खवाना में दाल पत्तेदार सब्जी गुड़ बाजरा तिल नींबू ने संतरा गोभी तरबूज आंवला टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो अनिमिया थकी बची शकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमर वावरा अमर हित्ता किसान भाई बोन ने आपनी बोन मनीषा
1: ने आपनी बोन अंजलि नु
0: राम राम। होवी भाई बोनो आप सब हमली रिया हो आपड़ू सामुदायिक रेडियो वाकड़ रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नु घणी मान स्वागत करे हां हमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में।
1: होवे भाई बोनो लेने हाजिर थी गया हां कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने एक नया विषय ने हाते। भाई बोनो आज कार्यक्रम में हमारी अब तक की बातचीत नु विषय है कि पानी आपवाने पहले आपणे पानी बचावानी तैयारी हरते करी शकू। मनीषा बोन आपणे देखो हो के आज जे विषय माते आज आपणे वात करी रहो ये आपणी खेती पशुपालन गांव आवावारी पीढ़ी ने भविष्य तक की जुड़े तको है। आपणे सब जाणो छो कि पानी जे है इने वगर आपणुं जे जीवन है ई संभव नथी। खेतरनी हरियाली पशुओनो स्वास्थ्य घरनी जे जरूरत है ई ने गांवनी समृद्धि हेती चीजे है ई पानी माते ज निर्भर करे है। पण आजना टाइम में आपणे देखी रहो के गांव में गर्मी जे है ई वधवाने कारण कुआ हुकी जाए है, हेडपंप में पानी नथी आवतुं, खेतर में सिंचाई नी जे समस्या है ई वधी रही है। ये बीजी आड़ी आपणे देखो हो तो बरसात नुं जे पानी है ई हेतु वहीने नारा ने नदियों में सलूसा है, जेने कारण पानी नी जे समस्या है ई हर साल वधती जई रही है। ताजे आपणे कार्यक्रम में ई वात करंगा कि हरते पानी नी हर बूंद बचावू आपणे भविष्य ने बचावाने बराबर है।
0: હવે અંજલિ બોન તો આના વિશે માટે આપણે ભાઈ બોનો કતી ઘણા આકાની વાતે રેંગા અબર હામળા આગીત ને મોરે કરા આપણી વાતે
1: હવે
0: તો ભાઈ બોનો આપ સબ હામળતા રહેજો આપણું રેડિયો આપણી વાતે વાગડ રેડિયો 90.8 FM માટે।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
3: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
4: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है डिजिटल संतुलन में संयुक्त परिवारों की भूमिका अहम को लेकर। जैसे कि हम देखते हैं श्रोता साथियों कि मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल उपकरणों ने हमारे जीवन को आसान तो बना दिया है, लेकिन इनके ज्यादा उपयोग ने कई समस्याएं पैदा भी की है। आज हम देखते हैं कि बच्चे, युवा, बड़े सभी स्क्रीन के सामने अधिक समय बिताने लग गए हैं। ऐसे समय में संयुक्त परिवार केवल रिश्तों का समूह नहीं बल्कि जीवन में संतुलन बनाए रखने का एक मजबूत आधार बन सकता है।
0: बिल्कुल।
1: तो श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी यही बातें रहने वाली है कि डिजिटल संतुलन में संयुक्त परिवारों की क्या भूमिका होती है।
0: बिल्कुल। तो जागृति जी, बातें ढेर सारी बनी रहेंगी कार्यक्रम के माध्यम से, लेकिन अभी मन कर रहा है कार्यक्रम की शुरुआत में मनोरंजन करने का, तो क्यों ना हमारे साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था और हमारी बातें भी रही थी कि आज किस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है, डिजिटल संतुलन में संयुक्त परिवारों की भूमिका को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाहेंगे कि तकनीक का सही उपयोग परिवार का जो जीवन है वो बहुत अच्छा बना देता है। यानी कि आज का समय डिजिटल युग का समय है, जैसा कि हमने पहले भी कहा था अंजलि।
1: बिल्कुल।
0: शिक्षा, व्यापार, बैंकिंग, मनोरंजन और संचार सब कुछ डिजिटल माध्यमों से जुड़ गया है। सुबह उठते ही मोबाइल देखना और रात को सोने से पहले स्क्रीन पर समय बिताना आम आदत बन गई है। हम देखते हैं कि डिजिटल साधनों ने सुविधाएं बढ़ाई, लेकिन इनके कारण परिवार के सदस्यों के बीच संवाद भी कम होने लग गए हैं।
1: बिल्कुल।
0: कई बार एक ही घर में रहने वाले लोग घंटों साथ होते हुए भी एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। हर व्यक्ति अपनी डिजिटल दुनिया में खोया रहता है।
1: बिल्कुल शाकृति जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि डिजिटल संतुलन का अर्थ है तकनीक का उपयोग करना, लेकिन उसकी लत का शिकार न होना। जब हम मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल साधनों का उपयोग अपनी जरूरत के अनुसार करते हैं श्रोता साथियों, और साथ ही परिवार, समाज और स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास के लिए भी पर्याप्त समय निकालते हैं, तब उसे डिजिटल संतुलन कहा जाता है।
0: बिल्कुल।
1: डिजिटल संतुलन जागृति जी हमें सिखाता है कि तकनीक हमारी सहायता बने मालिक नहीं। हम बात करें संयुक्त परिवार की विशेषता की, तो श्रोता साथियों, संयुक्त परिवार भारतीय संस्कृति की एक अनमोल धरोहर है। संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। दादा दादी, माता पिता, बच्चे, चाचा चाची, भाई बहन सभी एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनते हैं।
0: जी हाँ।
1: यह परिवार केवल रहने की व्यवस्था नहीं बल्कि जीवन सीखने की एक पाठशाला है। संयुक्त परिवार में अनुभव मिलता है, संस्कार मिलते हैं, संवाद बना रहता है, जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है, अकेलेपन की भावना कम होती है। यही गुण श्रोता साथियों डिजिटल संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि हम देखते हैं कि डिजिटल संतुलन का अर्थ तकनीक का ऐसा उपयोग जिसमें जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलू परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, मित्रता और सामाजिक संबंधों को नुकसान न पहुंचे। श्रोताओं, संयुक्त परिवार भारतीय संस्कृति की एक अमूल्य परंपरा है। इसमें दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन और अन्य सदस्य भी एक साथ रहते हैं। ऐसे परिवारों में केवल जिम्मेदारियां ही साझा नहीं होती अंजलि, बल्कि अनुभव, संस्कार और भावनाएं भी साझा होती है।
1: बिल्कुल।
0: बच्चों को अनेक लोगों का स्नेह और मार्गदर्शन मिलता है। आज जब डिजिटल उपकरण लोगों को अकेलेपन की ओर ले जा रहे हैं, संयुक्त परिवार लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही बताना चाहेंगे कि दादा दादी परिवार के अमूल्य धरोहर होते हैं। उनके पास जीवन के विशाल अनुभव होते हैं अंजलि। वे बच्चों और युवाओं को समझा सकते हैं कि जीवन केवल आभासी दुनिया तक सीमित नहीं है, वास्तविक खुशियां रिश्ते, संवाद और अनुभव में छिपी होती है।
1: बिल्कुल।
0: उनकी बातें और अनुभव युवाओं को तकनीक के सही उपयोग की दिशा दिखा सकते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, डिजिटल दुनिया की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग एक ही घर में रहकर भी एक दूसरे से कम बात करते हैं। कई बार भोजन करते समय भी सभी मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, लेकिन संयुक्त परिवारों में बातचीत की परंपरा बनी रहती है।
0: बिल्कुल।
1: घर के बड़े लोग बच्चों से दिन भर की बातें पूछते हैं, परिवार के सदस्य मिलकर समस्याओं पर चर्चा करते हैं, त्योहार, पारंपरिक कार्यक्रम और दैनिक गतिविधियां सभी को एक दूसरे के करीब लाती है।

0: ये संवाद श्रोता साथियों लोगों को डिजिटल दुनिया के बाहर भी एक मजबूत सामाजिक जीवन प्रदान करता है।
1: बिल्कुल,
0: हम कहना चाहेंगे कि आज छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल के बिना खाना नहीं खाते। कई बार माता पिता काम में व्यस्त होने के कारण बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, लेकिन संयुक्त परिवार में बच्चे केवल मोबाइल तक सीमित नहीं रहते। दादा दादी उन्हें कहानियां सुनाते हैं, नाना नानी जीवन के अनुभव साझा करते हैं, भाई बहन और चचेरे बहन जो होते हैं वो एक साथ खेलते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इससे बच्चों का ध्यान केवल स्क्रीन पर नहीं रहता बल्कि वे वास्तविक जीवन की गतिविधियों में भी भाग ले पाते हैं। इससे बच्चों का मानसिक और सामाजिक विकास बेहतर होता है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि हम देखते हैं कि लगातार स्क्रीन देखने से तनाव, चिंता और अकेलेपन की भावना बढ़ सकती है। हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे कि कई युवा सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना करके स्वयं को कमतर महसूस करने लगते हैं। अंजलि
0: जी, जी
1: श्रोताओं, संयुक्त परिवार भावनात्मक सहारा प्रदान करते हैं। जब व्यक्ति परेशान होता है तो परिवार के सदस्य उसका मनोबल बढ़ाते हैं और उसे सही दिशा दिखाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: परिवार का स्नेह कई मानसिक समस्याओं को कम करने में मदद करता है। हम कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार में त्योहार, पारिवारिक आयोजन, धार्मिक आयोजन, सामूहिक गतिविधियां नियमित रूप से होती है। इन गतिविधियों में भाग लेने से परिवार के सदस्य स्क्रीन से दूर होकर वास्तविक जीवन के अनुभव प्राप्त करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: साथ बैठकर भोजन करना, खेल खेलना, यात्रा करना और बातचीत करना डिजिटल संतुलन को मजबूत बनाता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है, आगे निरंतर यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी मन कर रहा है एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से संवाद की संस्कृति को मजबूत बनाता है संयुक्त परिवार, यही बात करें तो बुजुर्गों का अनुभव बहुत सी बार बच्चों का मार्गदर्शक बनता है। संयुक्त परिवार में बुजुर्ग सबसे बड़ी ताकत होते हैं। उन्होंने जीवन के अनेक उतार चढ़ाव देखे हुए होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: वे बच्चों और युवाओं को समय का महत्व समझाते हैं। वे बताते हैं कि जीवन केवल मोबाइल स्क्रीन तक सीमित नहीं है। उनके अनुभव युवाओं को संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। बुजुर्गों की मौजूदगी परिवार में अनुशासन और संतुलन का वातावरण भी तैयार करती है। जागृति जी,
1: बिल्कुल
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि आज डिजिटल युग में अकेलापन एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। सोशल मीडिया पर हजारों मित्र होने के बावजूद कई लोग मानसिक रूप से अकेलापन महसूस करते हैं। संयुक्त परिवार जागृति जी इन समस्याओं का प्रभावी समाधान है। जब परिवार के लोग साथ होते हैं तो भावनात्मक सहयोग मिलता है, समस्याएं साझा की जाती हैं, तनाव कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है।
1: बिल्कुल,
0: इससे मोबाइल और सोशल मीडिया पर अत्यधिक निर्भरता भी कम होती है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि आज संयुक्त परिवारों को केवल परंपराओं का संरक्षण ही नहीं करना है बल्कि डिजिटल जागरूकता भी फैलानी है।
0: बिल्कुल,
1: परिवार के सदस्य मिलकर स्क्रीन टाइम के नियम बना सकते हैं। भोजन के समय मोबाइल का उपयोग न करना, परिवार के साथ समय बिताना और डिजिटल अवकाश देना, ये सारे छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तकनीक का विरोध नहीं श्रोताओं, बल्कि उसका विवेकपूर्ण उपयोग ही आज की आवश्यकता है। आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि तकनीक हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन जीवन का केंद्र नहीं है। यदि डिजिटल साधनों का उपयोग संतुलित रूप से किया जाए तो वे विकास के साधन बनते हैं।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन यदि उनका अत्यधिक उपयोग हो जाए तो वे रिश्ते और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। संयुक्त परिवार हमें सिखाते हैं अंजलि कि जीवन की असली शक्ति रिश्तों, संवाद, सहयोग और प्रेम में होती है।
0: बिल्कुल,
1: दादा दादी का अनुभव, माता पिता का मार्गदर्शन और परिवार का साथ डिजिटल संतुलन बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए श्रोता साथियों, आज आवश्यकता है कि हम तकनीक और परिवार दोनों के बीच संतुलन स्थापित करें।
0: बिल्कुल,
1: मोबाइल की रोशनी से अधिक महत्वपूर्ण परिवार के चेहरों की मुस्कान है। सोशल मीडिया की लाइक से अधिक मूल्यवान अपने लोगों का स्नेह है। इसलिए याद रखिए, जब परिवार साथ होता है तो जीवन की दिशा भी सही रहती है।
0: बिल्कुल,
1: तकनीक का उपयोग कीजिए लेकिन उसे अपने रिश्तों पर हावी मत होने दीजिए। दिन का कुछ समय अपने परिवार के लिए जरूर निकालिए, दादा दादी की बातें सुनिए, माता पिता के साथ बैठिए, भाई बहनों के साथ हंसिए और अपने घर को केवल रहने की जगह नहीं बल्कि खुशियों का केंद्र बनाए, क्योंकि कहा गया है कि डिजिटल दुनिया रहे साथ पर परिवार न छूटे हाथ। यही संतुलन, यही पहचान और यही खुशहाल जीवन की शान है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि सामूहिक गतिविधियां बढ़ाती हैं डिजिटल संतुलन, यानी कि श्रोता साथियों संयुक्त परिवार में कई गतिविधियां मिलजुल कर की जाती हैं, जैसे कि सुबह की सैर, धार्मिक आयोजन, पारिवारिक बैठक, त्योहारों की तैयारी, खेल कूद, खेती और घरेलू कार्य। श्रोता साथियों, जब लोग इन गतिविधियों में शामिल होते हैं तो स्वाभाविक रूप से स्क्रीन टाइम कम होता है, इस प्रकार डिजिटल संतुलन बनाए रखना आसान हो जाता है। कहना चाहेंगे कि युवाओं पर आज सोशल मीडिया का सबसे अत्यधिक प्रभाव है।
1: बिल्कुल,
0: तुलना, दिखावा, लाइक्स की दौड़ में कई बार तनाव पैदा होता है। संयुक्त परिवार युवाओं को वास्तविक जीवन की सच्चाई से जोड़ता है। परिवार के सदस्य उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और सही दिशा दिखाते हैं। इससे युवा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं और डिजिटल दुनिया के दबावों में कम आते हैं।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि समय बदल रहा है, तकनीक बदल रही है और जीवन जीने के तरीके भी बदल रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन एक चीज है जो कभी पुरानी नहीं होती, वो है परिवार का प्यार, अपनापन और साथ। श्रोता, मोबाइल की बैटरी खत्म होने पर उसे चार्ज किया जा सकता है, लेकिन यदि रिश्तों की गर्माहट कम हो जाए तो उसे वापस लाने में बहुत समय लग जाता है।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए डिजिटल दुनिया में आगे बढ़िए, नई तकनीक सीखिए, अपने सपनों को पंख दीजिए, लेकिन अपने परिवार की उंगलियां कभी मत छोड़िए, क्योंकि जब जीवन की राह कठिन होती है तब इंटरनेट नहीं बल्कि परिवार का साथ हमारा सबसे बड़ा सहारा बनता है।
0: बिल्कुल,
1: तो श्रोता साथियों, अपने दिल और दिमाग में ये बात बैठा लीजिए कि हर दिन कुछ समय बिना मोबाइल के अपने परिवार के साथ आप बिताएंगे, उनकी बातें सुनेंगे, अपने मन की बातों को साझा करेंगे और रिश्तों को मजबूत बनाएंगे। यही छोटा कदम अंजलि हमें डिजिटल संतुलन और खुशहाल जीवन की ओर ले जाता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम तकनीक को अपनाएं लेकिन रिश्तों को न भूलें। मोबाइल की स्क्रीन से निकलकर परिवार की मुस्कान को देखें, सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर आकर अपनों की बात सुने और डिजिटल सुविधा के साथ मानवीय मूल्यों को महत्व दें। याद रखिए श्रोता साथियों कि डिजिटल संतुलन का सबसे मजबूत आधार कोई ऐप या तकनीक नहीं है, बल्कि एक जागरूक, संवेदनशील और प्रेमपूर्ण परिवार है और इस दिशा में संयुक्त परिवार की भूमिका वास्तव में अमूल्य और अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।
1: बिल्कुल अंजलि। तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी बातें हो चुकी है, फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ में, हमारे श्रोता साथियों को एक नई प्रेरणा और नई ऊर्जा के साथ में।
0: बिल्कुल।
1: और अब समय हो चला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। अंत में बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि तकनीक हमें दुनिया से जोड़ सकती है, लेकिन परिवार हमें खुद से जोड़ता है। इसीलिए स्क्रीन की चमक से आगे बढ़कर रिश्तों की रोशनी को पहचानिए, क्योंकि वही रोशनी जीवन भर आपका मार्गदर्शन करेगी।
1: बिल्कुल,
0: इन्हीं उम्मीदों के साथ आपके साथ विदा लेते हैं। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर भेजिएगा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज तकी आराज ने अपना वंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो जवाब मिलने तक परेशान करते हैं, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें हम बार बार सोचकर खुद ही बड़ा बना देते हैं। कभी कभी समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हमारी सोच उसे बना देती है। नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो फॉगर रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त अंजलि पारेश्वर, लेकर हाजिर हो चुकी हूं श्रोता साथियों कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो जीवन की उन बातों को समझने की कोशिश करता है जो अक्सर हमारे आसपास तो होती हैं, लेकिन हमारी नजर उन पर कम जाती है। आज का विषय है ज्यादा सोचना ही हमारी सबसे बड़ी परेशानी है। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा सवाल है जिससे शायद हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में जुड़ा है, चाहे वह छात्र हो, किसान हो, गृहिणी हो, युवा हो या बुजुर्ग। कभी न कभी हम सभी किसी बात को लेकर इतना सोचने लगते हैं कि वह सोच हमारी शांति छीन लेती है। तो आज कार्यक्रम में हमारी आपसे इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम के शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला ये गीत। आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं कि क्या ज्यादा सोचना ही हमारी सबसे बड़ी परेशानी है। जी हाँ श्रोता साथियों, ईश्वर ने मनुष्य को सोचने की शक्ति दी है। यही शक्ति हमें निर्णय लेने, भविष्य की योजना बनाने और समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करती है। लेकिन श्रोता साथियों, जब यही सोच नियंत्रण से बाहर हो जाती है ना, तब वह मददगार नहीं बल्कि बोझ बन जाती है। कई बार हम किसी छोटी सी बात को लेकर घंटों, दिनों और कभी कभी महीनों तक सोचते रहते हैं। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं असफल तो न हो जाऊं। इन सवालों का श्रोता साथियों कभी भी कोई भी अंत नहीं है। किसी ने कहा है कि सोच हमें आगे बढ़ाती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोच हमें वहीं खड़े कर देती है। इसलिए ज्यादा सोचने की आदत को हमें खुद से दूर करना है। और जो व्यक्ति ज्यादा सोचता है उसमें ये आदत कैसे बनती है, इस बारे में हम बात करें तो दोस्तों, अधिक सोचने की शुरुआत अक्सर चिंता से होती है। जब हमें किसी बात का डर होता है तब हमारा मन बार बार उसी विषय पर लौटता है और धीरे धीरे ये एक आदत बन जाती है। कुछ लोग हर निर्णय से पहले इतना सोचते हैं ना श्रोता साथियों कि निर्णय ही नहीं ले पाते। कुछ लोग बीते हुए समय की गलतियों को बार बार याद करते रहते हैं। कुछ लोग भविष्य की ऐसी घटनाओं की चिंता करते हैं जो शायद कभी हो ही नहीं। इस तरह श्रोता साथियों, हमारा मन वर्तमान से दूर होकर कल्पनाओं और आकांक्षाओं में भटकने लगता है। आपने भी श्रोता साथियों कभी महसूस किया हो तो सोचिएगा कि अक्सर हम कुछ ऐसी ऐसी बातों को लेकर चिंता करते हैं जो असल में चिंता करने लायक होती ही नहीं है। और जब हम इन सारी चीजों को लेकर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और उन चीजों को सोचते रहते हैं तो हमारी जो चिंता है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। और इसी तरीके से आज हम एक चीज को लेकर सोच रहे हैं तो कल दूसरी चीज को लेकर सोचेंगे और ये हमारी आदत का हिस्सा बन जाता है। और जब ये हमारी आदत का हिस्सा बन जाता है तो ज्यादा सोचने के जो नुकसान होते हैं वो हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा पड़ते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज्यादा सोचने के जो नुकसान है वो हमारी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। यानी कि दोस्तों, जब हम लगातार किसी बात में उलझे रहते हैं तो हमारा आत्मविश्वास कम होने लगता है, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है, नींद प्रभावित होती है, मन हमेशा बेचैन रहने लगता है और खुशी कम हो जाती है। धीरे धीरे व्यक्ति का काम से ज्यादा अपनी चिंताओं में व्यस्त रहना जरूरी हो जाता है उसके लिए। इसलिए किसी ने कहा है कि कई बार थकान शरीर से नहीं लगातार चलती सोच से पैदा होती है। तो दोस्तों, आपको मैं कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि ज्यादा सोचने की जो आदत है वो हमारे साथ साथ हमारे घर परिवार के सदस्यों पर भी असर करती है। इसलिए इस समस्या को समय रहते पहचान कर खुद को उससे दूर रखने की जरूरत है। इस समस्या का हल क्या हो सकता है ये कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको अवश्य बताऊंगी, लेकिन अभी मेरा मन कर रहा है एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं इस गीत को।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है, यहीं अब मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि क्या सोच से समस्या का हल होता है। तो दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि सोचना और समाधान ढूंढना दोनों अलग अलग बात है, लेकिन एक ही बात को बार बार दोहराते रहना समस्या का समाधान नहीं है। मान लीजिए कि किसी किसान की फसल खराब हो गई, अगर वह केवल यही सोचता रहे कि नुकसान क्यों हुआ तो उसकी स्थिति कभी नहीं बदलेगी, लेकिन वह यह सोचे कि अगली बार क्या सुधार किया जा सकता है और किसी व्यक्ति से परामर्श ले तो उसकी सोच उपयोगी बन सकती है। यानी कि श्रोता साथियों, इस बात से हमें साफ पता चलता है कि सोच तब लाभदायक है जब तक वह हमें कार्य की ओर ले जाए, और जब सोच हमें केवल चिंता की ओर ले जाती है तो वो हमें नुकसान पहुंचाती है। देखते हैं ना श्रोता साथियों कि अक्सर हम अपने मन को आराम नहीं देते। जैसे शरीर को विश्राम चाहिए होता है, वैसे ही मन को भी चाहिए होता है, लेकिन हम लगातार हर किसी से तुलना करते रहते हैं, भविष्य की चिंता करते रहते हैं। और अक्सर हमने देखा है कि बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो बीती बातों को याद करते करते अपने मन की चिंता को बढ़ा देते हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि हमारा जो मन है वो हमेशा ऐसी बातों को लेकर चिंता में रहता है जो चिंता करने लायक ही नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, हर रास्ता पहली नजर में साफ नहीं दिखता। कुछ बातें समय को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि हर गांठ सोच से नहीं धैर्य से खुलती है। इसलिए श्रोता साथियों, आज के समय में ज्यादा सोचने का एक बड़ा कारण तुलना भी है। हम दूसरों की सफलता को देखते हुए बहुत सारी चीजें सोच लेते हैं कि मैं क्यों पीछे हूँ, मेरे पास वह क्यों नहीं है, मैं उतना अच्छा क्यों नहीं हूँ। तो श्रोता साथियों, यही जो तुलना की चीजें हैं वो धीरे धीरे हमारी जिंदगी की खुशियों को छीन लेती है। कहना चाहूंगी कार्यक्रम के माध्यम से कि हर व्यक्ति की परिस्थितियाँ, क्षमताएं और यात्रा अलग होती है, इसलिए हमें कभी भी हमारी तुलना किसी और व्यक्ति से नहीं करनी है। हम हमारी कहानी खुद लिख सकते हैं, और हमारी कहानी किसी और व्यक्ति की कहानी से मेल नहीं खा सकती। इसलिए हमेशा अधिक सोचने की जो चीजें हैं उसे अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। सोचना है तो उसका समाधान ढूंढें। उस समस्या के समाधान के साथ आपको कई ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपकी जिंदगी को बदल देंगी। यही बात आती है दोस्तों कि क्या अधिक सोचने वाले लोग कमजोर होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अधिक सोचने वाले लोग अक्सर संवेदनशील और जिम्मेदार होते हैं। वे हर बात को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन समस्या तब होती है जब संवेदनशीलता चिंता में बदल जाती है। इसलिए जरूरत सोच को खत्म करने की नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा देने की है। इसलिए हमें हमारी जिंदगी को थोड़ा सा सरल बनाना है। इसके लिए हमें ये करना होगा कि हमें हर बात का जवाब आज नहीं मिल रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो हमें कभी नहीं मिलेगा। वो हमें अवश्य मिलेगा, उसके लिए हमें धैर्य को बनाए रखना है। हर योजना पूरी तरीके से सफल हो ये भी जरूरी नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सी बार कोई व्यक्ति अगर किसी चीज को लेकर योजना बना रहा है और उसकी योजना में वो सफल नहीं होता है तो अगली बार से वो योजना बनाना ही बंद कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें हमारे जीवन में एक योजना से सफलता नहीं मिल रही है तो हमें उस प्रयास को निरंतर जारी रखना है। एक वक्त ऐसा आएगा जब हम हमारी योजना को सफल बना पाएंगे। हमें हर व्यक्ति की चीजों को समझना है। कुछ चीजें अनिश्चित होती हैं जीवन में, उनको भी हमें स्वीकार करने की जरूरत है। कहते हैं ना कि जिंदगी को समझने की कोशिश अच्छी है, लेकिन जिंदगी को जीना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने मन को शांत रखने की चीजों के बारे में सोचिए। इसके लिए आप कुछ छोटे छोटे उपाय अपना सकते हैं, जैसे कि आप अपनी चिंता को डायरी में लिख लीजिए, या अपने ऐसे किसी व्यक्ति से साझा कीजिए जिस पर आप भरोसा करते हैं। इसी के साथ जो आपके नियंत्रण में नहीं है उन सारी चीजों पर ध्यान दीजिए। हर समस्या का हल तुरंत खोजने की कोशिश मत कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। परिवार और मित्रों से बातचीत कीजिए, अपने शौक और रुचियों के लिए समय निकालिए, क्योंकि
यह जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिससे हम अपने मन को खुश रख सकते हैं और वर्तमान के क्षण को जीने की आदत डालिए। तो श्रोता साथियों, इस तरीके से कार्यक्रम में हम जान पाए कि ज्यादा सोचना किस तरीके से हमारे जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी बन सकता है। यही आपको अंत में कहना चाहूंगी कि सोचना हमारी शक्ति है, लेकिन वही शक्ति जब कमजोरी बन जाती है दोस्तों, तब वह हमें वर्तमान से दूर कर देती है। जीवन की हर समस्या का समाधान केवल सोचने से नहीं, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने से आता है। हमें यह समझना होगा कि हर बात हमारे नियंत्रण में हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ प्रयास और कुछ ऐसी चीजें जो जीवन में बदलनी जरूरी है, उनके माध्यम से हम हमारे जीवन को बदल सकते हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मन को हर समय सवालों का घर मत बनाइए, कुछ खिड़कियां उम्मीद के लिए खुली रखिए। जिंदगी केवल सोचने के लिए नहीं मिली है, यह हमें महसूस करने, सीखने और जीने के लिए मिली है। तो अपनी जिंदगी का आनंद लीजिए और अपने मन को शांत रखिए। आशा करती हूँ कि कार्यक्रम में जो बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के साथ ही अब मैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आज कार्यक्रम में मेरी आपसे जो बातचीत रही है, जो गीत संगीत रहे हैं, वो आपको अवश्य पसंद आए होंगे। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपनी साथी अंजलि पारेषर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।

सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए, हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का

आग खुली तो देखा घर में कोई नहीं था। हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून हुआ है।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
3: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात में शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सी व्यायाम ने तात काढ़ी ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: तो साथियों, ये थी हमारी आज की सभा, जो कि अब यही समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज के सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में, तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।